0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों। श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स,
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

अच्छा, कभी सोचा है कि हम अक्सर उदास क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम दूसरों की जिंदगी की सुपरहिट फिल्म का कंपैरिजन अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से करने लगते हैं। हम किसी का सजा हुआ घर, किसी की कामयाबी, किसी की हंसती हुई पिक्चर को देखकर सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी कमियां हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान अपना कच्चा चिट्ठा छुपाकर केवल अपना सबसे खूबसूरत पन्ना ही दुनिया को दिखाता है। तो किसी और की किताब के आखिरी पन्ने से अपनी बुक के पहले पन्ने को कंपेयर मत कीजिए। आपकी कहानी अलग है, आपकी कहानी की लय अलग है और आपका वक्त अलग है। सुनते रहिए ठापन्स, सदाक्षी रहेगी आपके साथ।

0: भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: बचपन में सिखाया जाता है ये सीखो वो सीखो, यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो वहाँ से करो, पर उम्र के एक पड़ाव पर आकर समझ आता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज्यादा भूलना जरूरी होता है। वो कड़वे एक्सपीरियंसेस जो हमने दिल से लगा रखे हैं, वो ढर्रे जो सोसाइटी ने हमारे दिमाग में भर दिए हैं कि सक्सेस क्या है या सक्सेस के लिए सही उम्र क्या होनी चाहिए, इन सब पुरानी बातों को भूलना ही अपने आप को आजाद करना है। दिमाग को जब तक पुराने कचरे से खाली नहीं करेंगे, उसमें नई और खूबसूरत सोच के लिए जगह कैसे बनेगी। इसलिए आज ही अपने दिमाग से पुराने कचरों को निकालिए और अपने दिमाग को फ्रेश कीजिए और सुनते रहिए ठापंस रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देख कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

साक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपके मॉर्निंग शो इट हैपेंस को रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं, सही नौकरी, सही घर, सही रिश्ते और सही शेड्यूल। और जहाँ कोई एक चीज बिगड़ती है तो हमारा पूरा बैलेंस ही हिल जाता है। जापान में एक बहुत ही खूबसूरत सोच है, वाबी साबी, और ये सिखाती है कि दुनिया में कोई भी चीज पूरी, हमेशा रहने वाली या एकदम परफेक्ट नहीं होती। दरारों में, पुरानेपन में और अधूरेपन में भी एक अलग ही ब्यूटी होती है। जिंदगी अगर थोड़ी बिखरी हुई है तो उसमें झल्लाहट मत लाइए, वही बिखराव तो आपकी जिंदगी को एक नई, अलग और बेहतरीन कहानी देता है। और उसी बदलाव के नाम ये अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

अच्छा, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हैं ताकि सामने वाला बुरा ना मान जाए, दोस्तों को मना नहीं कर पाते, ऑफिस में ज्यादा काम के लिए भी मना नहीं कर पाते और एंड में खुद को थका हुआ और स्ट्रेस में पाते हैं। you know, जब आप किसी चीज को हाँ कहते हैं, खासकर वो चीज जो आपका सुकून छीनती है, तो आप असल में खुद को ना कह रहे होते हैं। दूसरों को खुश करने की होड़ में खुद का गला घोटना बंद करिए। कभी कभी बहुत ही प्यार से कहा गया छोटा सा ना भी आपके मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ा हाँ साबित होता है। सोचिएगा और सुनते रहिए इट हैपेंस रीटू प्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

रेडियो प्रस्थानी 1701 AM सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। काम पर निकलने का वक्त हो गया है ना, रोज काम काम काम, रोज का दिन वैसा ही रूटीन, और फिर भी ये भरोसा नहीं कि कल का दिन आज से बेहतर होगा, लेकिन एक उम्मीद है, उम्मीद है कि हमारा हर पल बीते पल से बेहतर होगा, और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है दोस्तों। तो आज भी जब घर से निकल रहे हैं तो अपने साथ उम्मीद को लेकर निकलना मत भूलिएगा, ऐसा ना हो आप उसे घर पर ही छोड़ दें, क्योंकि उम्मीद जो है ना ये हर पल आपके साथ रहे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं आपको इस उम्मीद की जरूरत कब पड़ जाए, और अगर ये आपके साथ नहीं हुई ना तो आप टूट जाएंगे, लेकिन अगर ये साथ हुई तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आप जिंदगी में बुरा सा बुरा वक्त भी पार कर जाएंगे। अपनी उम्मीद को अपने साथ जरूर रख लीजिए और तब अपनी गाड़ी को अपने घर से आगे बढ़ाइए। सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

दोस्तों, ये था आज का इट हैपेंस का सफर। बहुत ही प्यार, बहुत ही शिद्दत के साथ मैंने आज आपके लिए बनाया था, आपके लिए चुना था। एंड आई होप कि आज के सफर को आपने इंजॉय किया होगा। कल बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आपके साथ बांटूंगी, शेयर करूंगी, लेकिन आज के सफर से अब इजाजत भी लूंगी। चलिए कल मिलते हैं नई बातों, नए गीतों के साथ, नए दिन के साथ। और आज के सफर से अब इजाजत दीजिए। जब तक हमारी आपकी मुलाकात होती है, तब तक यूं ही हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। हैव अ ग्रेट डे।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

सत श्रीकाल जी, मैं संदेश अलख शर्मा तुसी सुन रहे हो रेडियो ब्रिस्वानी 101.9 ते जिहड़ा हो चुके हैं हुण तक दी अहम खबरां दा तां फिर चलो करते हैं शुरुआत। रुक करदे हां पंजाब दे वल जिथे पंजाब पुलिस दे रोपड़ रेंज दे तत्काली डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल हरचरण सिंह पुरलर नूं मनी लॉन्ड्रिंग रोकू कानून तहत ईडी ने बीते दिन गिरफ्तार किया सी। हुण इस मामले विच अपडेट आई है। मामले विच चंडीगढ़ दी एक विशेष PMLA अदालत ने पुछगिछ लई पुलर नूं 8 दिनां दे रिमांड ते भेज दिता। मिली जानकारी मुताबिक ईडी दे चंडीगढ़ जोनल दफ्तर एक वलों जारी प्रेस नोट मुताबिक भ्रिष्टाचार अते आमदन दे जाणू स्रोतां नालों वध जायदाद बनाउण दे दोषां तहत चल रही जांच दे आधार ते DIG हरचरण सिंह पुलर नूं बीते दिनी 9 अक्तूबर नूं PMLA 2002 दी धारा 19 तहत गिरफ्तार किया गया सी। उधर पंजाब कांग्रेस के नवे प्रधान प्रगट सिंह ने पार्टी के पंजाब इंचार्ज सचिन पायलट नाल दिल्ली विच मुलाकात की। इस मुलाकात दौरान पंजाब कांग्रेस की आने वाली रणनीति संगठन मजबूत करन अते सूबे विच पार्टी दी अगलिया सरगर्मियां बारे विचार वटांदरा होने की जानकारी है। प्रगट सिंह वालों 11 अक्तूबर को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन विखे प्रधान का अहुदा संभालने तो बाद सचिन पायलट नाल मुलाकात अहम मनी जा रही है। अहुदा संभालने समय पार्टी के कई सीनियर आगू मौजूद सन। समागम नूं पंजाब कांग्रेस दे आगुआं विचकार तालमेल अते एकता दा संदेश देण दी कोशिश वजों वी देखिया गया सी। दिल्ली विच होई मीटिंग दौरान पंजाब विच पार्टी दे जथेबंदक टांचे आगुआं अते वर्करां विचकार तालमेल अते आउण वाले समें विच कीते जाण वाले सियासी प्रोग्रामां बारे चर्चा होण दी संभावना है। पंजाब विच 2027 दीआं विधान सभा चोणां दे मद्देनज़र कांग्रेस लई संगठन नूं सरगर्म करना अते जमीनी पद्धर ते पार्टी दीआं गतिविधियां नूं तेज़ करना महत्वपूर्ण रहेगा। उधर दूजे पासे पंजाब कांग्रेस के नवे प्रधान प्रगट सिंह वालों अहुदा संभालण मौके कांग्रेस भवन विखे साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बुते हार पा के श्रद्धांजलि भेट करने का मामला सियासी चर्चा का विषय बन गया। साबका केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिठू ने इस मामले से सवाल उठाउंदिया हैरानी प्रगटाई है कि प्रगट सिंह ने राजीव गांधी के बुत ते तां हार पा दिता पर उत्थे मौजूद साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अते पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दे बुतां ते हार क्यों नहीं पाया गया। बिटू ने कहा है कि वह जानना चाहते हैं कि प्रगट सिंह अते उना दी टीम ने अजिहा क्यों किया। उना कहा है कि इस सवाल सिर्फ बुतां ते हार पाउण या ना पाउण दा नहीं सगो इस दे पिछे दी सोच ते राजनीतिक संदेश नूं समझण दा भी है। उना प्रगट सिंह नूं इस मामले ते स्पष्टीकरण देण दी अपील कीती है। उधर दूजे पासे कैनेडा विच अल्बर्टा सूबे दे वक्खवादियां दे समर्थन तों बाद वक्खवादी संगठन यानी कि सिख फॉर जस्टिस ने हुण क्यूबेक सूबे विच जित दर्ज करन वाली आजादी पक्खी पार्टी पार्टी क्यूब बैकोइस नाल राबता कायम किया। 5 अक्तूबर नूं होईआं सूबाई चोणां विच वत्त-वत्त सीटां जितण वाली पार्टी क्यूब बैकोइक दे आगू अते नवें बनन जा रहे प्रीमियम पॉल सेंट पीयर पालामोंडन नाल अते उन्हां दी पार्टी दे नुमाइंदिआं नूं SF6 वल्लों 18 अक्तूबर नूं एडमंटन विखे करवाया जा रहा तथाकथित खालिस्तान रेफरेंडम विच निरीक्षक वजों शामिल होने का सद्दा दिता गया है। SFJ दे जनरल कौंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पालामोंडन नूं उन्हां दी जित दी वधाई दिंदिआं क्यूबेक विच लोकां दे अपने सियासी भविख दा फैसला करन दे जमहूरी हक दा समर्थन करन लई उन्हां दी पार्टी दी शलाघा कीती। पन्नू ने उन्हां दी जित तों बाद दित्ते भाषण जिस विच उन्हां वल्लों इक वक्खरा राष्ट्र बनण दे सुपने दा जिक्र कीता दा हवाला दिंदिआं कहा है कि इह खालिस्तान दे समर्थन नाल मेल खांदा है। उधर दूजे पासे भारत के हाई कमिश्नर दिनेश के पटनायक ने जोर देकर कहा है कि खालिस्तान का मुद्दा कैनेडा विच समस्या है भारत विच नहीं। नाल ही उन्होंने उचावा नूं अपील की है कि वह शांतमई सियासी वकालत ते हिंसा फिरौती ते संगठित अपराध नाल जुड़िया अतवादी गतिविधियां विच फर्क करन। कैनेडा दे जनतक ब्रॉडकास्टर CPAC नूं दिते इंटरव्यू विच पटनायक ने कहा है कि भारत विच खालिस्तान नूं लैके कोई सियासी मुद्दा नहीं है। कैनेडा नूं देश विच रहण वाले अतवादियां दे छोटे समूह वल्लों कीतियां जा रहियां गतिविधियां नाल नजिठण दी लोड़ है ते ओह वी उन्हां दी तुलना सिख भाईचारे नाल कीते बिना।
उधर भारत की राजधानी दिल्ली विच दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने लई जंतर मंतर नूं निर्धारित स्थानां दी सूची तो हटा दिता है, जिस नूं लैके कांग्रेस जनता पार्टी दे मुखिया विजय दीपके ने महत्वपूर्ण बयान दिता है। उन्हां ने विरोध स्थानां दी सूची तो हटाए जाण ते सख्त नाराजगी प्रगट करते हुए कहा है कि हुण पूरा देश जंतर मंतर बन जाएगा। उन्हां कहा है कि मुख्य चोण कमिश्नर ज्ञानेश कुमार दे अस्तीफे दी वध दी मंग दे विचकार सरकार उन्हां नूं बचाउण लई नागरिकां विरुद्ध जंग छेड़ रही है। दीपक अपने जद्दी पिंड संतुक पिपरी पहुंचा ते उस जगह का दौरा किया जिथे उन्हां दी दादी दा अंतिम संस्कार किया गया। दीपक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते एक पोस्ट विच लिखा है कि नौजवानों ते हमले हो रहे हैं, पत्रकारां ते हमले हो रहे हैं, इत्थों तक कि संसद मैंबरां ते भी दिल्ली पुलिस हमले कर रही है। ज्ञानेश कुमार पीएम लई इन्ना महत्वपूर्ण क्यों है कि वह अपनी रक्षा लई किसी भी व्यक्ति विरुद्ध जंग छेड़न लई तैयार है। दस दिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौजूदा निर्धारित थावां दे विकल्प वजो विरोध प्रदर्शन अते प्रदर्शन करन वालियां ढुकवियां थावां दी समीक्षा करन लई कमेटी दा गठन कीता सी। हुक्म विच कहा गया है कि कमेटियां दी सिफारिश दे आधार ते जंतर मंतर नूं विरोध प्रदर्शनां लई इक मनोनीत स्थान वजो डिनोटिफाई कीता गया है। ਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਬਰਸੋਨੀ@ਬਰਸੋਨੀ.com, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀ ਬਰਸੋਨੀ 107.1 FM, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meat Brothers और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

आदाब जी, सत श्रीकाल जी, तुसी बने हुए जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101.1 एम ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल तुसी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तो तुसी की गाना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल, तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रिसोनी 101 एम साडा फेसबुक पेज है, ते ब्रिसोनी ब्रिसोनी.com साडी ईमेल आईडी है। खैर तुहानूं पता ही है, बार फिर भी मैं हर रोज दस दिनी हुनी हां ताकि तुसी कदे भुल ना जाओ जरा भी, ते जुड़दे रहो साडे नाल, रखो अपनी फरमाइशां, करो साडे नाल दिल दीआं गल्लां, ते मैं तां गाने तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी ना। जरूर जरूर जरूर सुणाउंगी। तां चलो फिर तुसी इन्हां गीतां नूं इंजॉय करो, मैं हुणे वापस आई।

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101.1 FM ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो तो सब तो पहला गल करते हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। तो देखो राजेश खन्ना का असल नाम ना जतिन खन्ना सीगा। राजेश खन्ना दे चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत नाल उन्होंने बॉलीवुड के विच डेब्यू किया सीगा। उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म आराधना फिल्म नाल रातों रात स्टारडम हासिल किया सीगा। तो राजेश खन्ना ने ना 1969 यानी कि 1969 तो लैके 1974 यानी कि 1974 तक 17 तो ज्यादा हिट फिल्मां दित्तियां सी। उन्होंने कटी पतंग इतफाक डोली बंधन दो रास्ते खामोशी द ट्रेन सच्चा झूठा सफर आनंद आन मिलो सजना अंदाज मर्यादा हाथी मेरे साथी महबूब ते छोटी भाभी वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां सी। 1974 तो उन्हां दा डाउनफॉल शुरू होया सी। फिर उन्होंने 1980 के दहाके विच वापसी की। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया नाल 1973 विच ब्याह किया सी। ब्याह तो बाद उन्होंने दो बेटियां ट्विंकल खन्ना ते रिंकी खन्ना होईयां सी। इन्हां बारे दसना थानू इनी ये दसना जरूरी हुंदा ना छोटियां छोटियां चीजां दसनियां बहुत ज्यादा जरूरी हुंदियां। बेटियां बारे दस दी पर पी लैंगी सुन लो।

0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. Pehli baar Brisbane Nasinu honge QFFA family ka hissa, saath hi dekhne aa rahe hain Suva, Lambasa, Nandi, Lotoka, Ba, Tavua, Rewa, Nandroga and Ra. Khane mein hogi the famous butter chicken duck curry, pulao aur mouth watering Fiji style barbecue. Are are, hum ice blocks ko kaise bhool sakte hain? To aa jao maidan mein aur apni Fiji community ke saath games aur khane ka lutf uthao. Zyada jankari ke liye call karein Chairperson Lawrence on 0407-764-272 ya Secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir President Jitendra Prasad on 0402-422-777.
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: ओनली गॉड कैन जज मी दैट राइट ओनली गॉड बे नोबडी एल्स
3: दे सीक्रेट
4: एयो शान तुम भी खिती आप नक दी नक ता

जी आनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो सोने वन सन वन एम ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो राजेश खन्ना दिया दोनों ही बेटियां ने बॉलीवुड विच किस्मत अजमाई, दोनों नू निराशा भी हाथ लगी। राजेश खन्ना की वड्डी बेटी ट्विंकल खन्ना ने 1995 विच बॉबी देओल दे नाल बरसात फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सी। डेब्यू फिल्म तो सुपरहिट रही पर इस तो बाद आने वाली मूवी फ्लॉप रही। ट्विंकल खन्ना ने जान दिल तेरा दीवाना इतिहास इंटरनेशनल खिलाड़ी जुल्मी बादशाह मीला वर्गिया फिल्मों में काम किया। ट्विंकल की भैन रिंकी खन्ना का करियर भी बॉलीवुड विच कुछ खास नहीं चल पाया। रिंकी खन्ना ने प्यार में कभी कभी मुझे कुछ कहना है वर्गिया फिल्मों में काम किया पर तकदीर नहीं बदली। ते फिर तकदीर जदो नहीं बदली ना ता फिर जल्दी ही उन्होंने बॉलीवुड तो विदा भी ले लिया ते ब्याह करवा लिया। ट्विंकल खन्ना ने जिते अक्षय कुमार दे नाल ब्याह कीता ता उधर रिंकी खन्ना ने बिजनेसमैन समीर सरन दे नाल ब्याह करवाया।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101.1 एम ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो हुण गल करदे हैं कि 70 ते 80 यानी कि 70s 80s दे दहाके दे सब तो वड्डे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन दी महानायक अमिताभ बच्चन दे बेटे अभिषेक ने 2000 दे विच रिफ्यूजी फिल्म नाल करीना कपूर दे नाल बॉलीवुड विच डेब्यू किया सी। जेबी दत्ता दे निर्देशन विच बनी ये फिल्म कुछ खास नहीं कमाल कर सकी। अभिषेक बच्चन दे करियर दे शुरुआत दी 14 फिल्मां फ्लॉप या डिजास्टर रहियां। उधर 2004 विच धूम फिल्म तो उन्हां नूं सफलता दा स्वाद चक्या हैगा। फिर बंटी और बबली, धूम 2, गुरु हिट रहियां। धूम 3, हैप्पी न्यू ईयर, हाउसफुल 3 वर्गे मल्टी स्टारर फिल्मां विच उन्हां दा काम सराया गया, पर ओह सोलो हिट देण विच फेल रहे। अभिषेक बच्चन भी अपने पिता वर्गे स्टार नहीं दोहरा पाए, पर अज भी स्ट्रगल कर रहे ने।
1: क्योंकि मेरी जिंदगी में चीजें सीखी हैं तो तुम दस नहीं मेरा फर्ज है।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सरोवर एम ते जी आज के संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। उस तो बाद 70s 80s के दहाके के एक होर सुपरस्टार की गल कर लेने वो है कि ने जितेंद्र जितेंद्र के बेटे ने तुषार कपूर उन्हां दी गल करते हैं। तुषार कपूर ने बॉलीवुड विच मुझे कुछ कहना है दे नाल डेब्यू किया सी। पहली फिल्म तो सफल रही पर फिर किस्मत ने साथ नहीं दिता। तुषार कपूर की एक्टिंग भी दर्शकों को लुभा नहीं सकी। क्या दिल ने कहा जीना सिर्फ मेरे लिए कुछ तो है ते ये दिल गायब खाकी क्या कूल है हम गोलमाल लव स्टोरी क्या लव स्टोरी है शूट आउट एट लोखंडवाला बहुत सारिया फिल्मा कीतिया पर कोई फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। मल्टी स्टारर दे विच उन्हां नूं सराया गया पर उही गल ना अपने दम ते ओ वी सोलो हिट नहीं दे पाए ते जल्द ही ओ साइड हीरो बन के रह गए।

0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जीतेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
1: फायर एंज तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

0: सारा कुछ मिले सुहाना सब तो।
1: Yes, welcome back. एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते चार चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए। देखो जितेंद्र दी एक टीवी हैगी है, बेटा नहीं कमाल कर सकिया, बेटी ने कीता है एकता कपूर। जी हाँ, एकता कपूर टीवी दी दुनिया दी क्वीन कहलाई जाती है। उन्होंने तुषार कपूर तो ज्यादा उन्होंने सफलता मिली है। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म कंपनी के बैनर तले एक तो वध के एक सीरियल प्रोड्यूस की। एकता कपूर ने हम पांच क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, कुसुम कहीं तो होगा, कसम से पवित्र रिश्ता बड़े अच्छे लगते हैं, ते जोधा अकबर वर्गे कई सीरियल्स बनाए। तुषार कपूर ते एकता कपूर ने विआह नहीं किया। तुषार कपूर जो 2016 विच सैरोगेसी ते आईवीएफ के जरिए एक बेटे के पिता बने, सिंगल फादर बने। तुषार ने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा है। तुषार कपूर की भैन एकता कपूर ने भी 27 जनवरी 2019 विच सैरोगेसी के जरिए बेटे रवि कपूर को जन्म दिया। सिंगल मदर बनी उन्होंने अपने पिता जितेंद्र के असली नाम ते बेटे का नाम रखा।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: रब तू नी मैनू सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो।
1: धर्मिंदर ही कलौते अजिहे स्टार है जिन्हां दे वड्डे बेटे सनी देओल दा करियर बेहद सफल रहा। सनी देओल ने 1983 दी बेताब फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया। फिर अर्जुन, घायल, दामिनी, घातक, बॉर्डर, गदर एक प्रेम कथा, गदर टू, बॉर्डर टू वर्गियां ब्लॉकबस्टर फिल्मां दित्तियां। सनी देओल ने अपने दम ते सोलो हिट दित्तियां ने। उधर उन्होंने भरा बॉबी देओल ने करियर की शुरुआत 1995 विच बरसात फिल्म नाल कीती सी। मूवी सुपरहिट रही, फिर सोल्जर, गुप्त वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां, पर इस तो बाद उन्होंने नसीब उन्हां तो गुस्से हो गया। बॉबी ने फ्लॉप फिल्मां दी लाइन चुन ली। पूरे 15 साल फ्लॉप करियर का दौर चुनिया। 2019 विच उन्हां दी किस्मत पलटी ते ओ नेगेटिव रोल्स करन लग गए। एनिमल मूवी विच उन्हां दा छोटा जिहा रोल दर्शकां दे दिल नूं छूकिया।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

देखो बेड़ा हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर एक हो सुपरस्टार की गल करनी रह गई सी, तो सोचा उन्होंने गल भी जरूर कर ला उन्होंने गल कर लैनी है जी। तो सुपरस्टार ऋषि कपूर 1973 विच आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी दे नाल डेब्यू किया सी। उन्होंने अपने करियर दे विच बहुत शानदार फिल्मा दित्तियां सी, अपनी छवि चॉकलेटी रही हैगी उन्हां दी। ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने अपने पिता की विरासत नूं अगे संभालिया है। वो अपने पिता नाल तो दो कदम अगे निकल गए। रणबीर कपूर ने 2007 विच सावरिया मूवी दे नाल डेब्यू किया, फिल्म फ्लॉप रही पर उन्होंने संघर्ष किया, फिर बहुत सारिया फिल्मा कीतिया ब्लॉकबस्टर रही। रणबीर कपूर के टैलेंट ते कामयाबी ते पूरी इंडस्ट्री ने मान ली हैगी, असीं भी मान गए हैगे। तो यह कुछ सितारे हैगे ने, उन्होंने बच्चे ने जिन्होंने की किया थानू दस्या है। बाकी तुसी की किया सारा दिन तुसी जरूर दस्या करो, साडे नाल जुड़ते रह करो। रेडियो बरसोनी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, बरसोनी @bersoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जिहड़ा भी अपनाना अपना लो, साडे नाल गल्ल पता जरूर करते रह करो। बाकी अपना ख्याल रख्या करो, ते मैं तां इही कहना कि कल करांगे मुलाकात। रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
0: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार सब ठीक है बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ फोर्टिस मेडांटा सीके बिरला आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओम्स ऑर्ग स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360 ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वेटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
3: कह दूं तुम्हें
4: हाँ
3: या चुप रहूं
4: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या है?
4: क्या है?

0: विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ तां जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन
1: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों। श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24th October 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर 550 वेम्बले रोड बेरनबाग क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज कल्चरल परफॉर्मेंसेज हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ लाइट्स।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365। दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

0: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निवा के साथ। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, कैसा फील कर रहे हैं आप? क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है और क्या आप लोगों को भी वो फेस्टिविटीज जो है वो हवाओं में जो है वो महसूस हो रही है या नहीं? और सबसे पहले आप सबको नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, आज नवरात्रे का तीसरा दिन है और तीसरा दिन मतलब गरबा सीजन जो है वो फुल्ली शुरू हो गया है। आप मुझे बताइए, क्या आप भी गरबा सीजन के लिए एक्साइटेड रहते हैं? क्या आपको भी बन ठनकर गरबा करने जाने में मजा आता है? वेल, वी आर गोना टॉक अबाउट इट, लेकिन पहले शुरुआत करेंगे एक बढ़िया से गाने के साथ। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे एक बहुत ही हेल्दी और इम्पॉर्टेंट रिचुअल के साथ। जी हाँ, वो रिचुअल है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज, यानी कि हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है और साथ में इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली हर तरीके से स्वस्थ रहना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते सबसे पहले शुरुआत होगी एक बड़े ही जबरदस्त गाने के साथ। और ये गाना ना सिर्फ आपको गरबा सीजन की याद दिलाएगा बल्कि दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा सीजन का भी याद दिलाएगा। क्यों? क्योंकि ये है रॉकी की रानी की प्रेम कहानी का गाना और उनका जो गाना है वो है ढिंढोरा बाजे रे। सुनते हैं स्कॉर्फिकर तो और बहुत सारी बातें।

0: जब से झंकार से है दिल के तार में तब से।
1: जी हाँ दोस्तों, तो परदेसिया तो जहाँ है उसे वहीं रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। एंड व्हेन आई से हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेदर। जी हाँ, सो वेदर के बारे में बात कर लेते हैं, मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। जी हाँ, बट अगर अभी की बात की जाए तो 25.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 27.2 डिग्री सेल्सियस के करीब। और जैसे मैंने कहा था कि बारिश के लिए रेडी रहिएगा, तो आई होप आप उसके लिए रेडी थे। जी हाँ, बारिश मुझे होती हुई नजर आ रही है और ये बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है 7 बजे के करीब, मतलब 7 बजे के करीब, 6 से 7 बजे के करीब मुझे सबसे ज्यादा बारिश होती हुई मुझे नजर आ रही है। सो उसके लिए रेडी रहिए। और रात के टेम्परेचर की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के रहने के चांसेस हैं। मैंने कहा ही था 80% चांसेस है बारिश होने के, 5 to 10 mm बारिश होने के चांसेस थे। वहीं ये तो आज की बात हुई, कल की अगर बात की जाए वेडनेसडे, तो कल भी बारिश होने के चांसेस हैं जो कि हैं 50% के करीब, यानी कि 50% चांसेस है बारिश होने के विद 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। वहीं थर्सडे की बात की जाए तो क्लाउडी सिचुएशन मुझे दिख रही है और 60% चांसेस बारिश के भी है, मतलब 60% एरिया में बारिश हो सकती है विद 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। ये तो 2-3-4 दिन जो आपने ये गर्मा गर्म मौसम फील किया है ना, उसका जो है वो अब फिर से थोड़ा ठंडी वाली साइड में जाने वाला है, मतलब ठंड की तरफ जाने वाला है थोड़ा, क्योंकि तापमान जो है इस बारिश से गिरेगा और आ जाएगा वो 22 या 21 डिग्री सेल्सियस के करीब। सो या रेडी रहिए, क्योंकि बारिश जो है वो आपका जो है वो नहीं छोड़ने वाली है नाता। और मैं आपको बता दूं कि आपको छाते के बिना घर से नहीं निकलना है अब जितने भी दिन आ रहे हैं, मतलब मुझे बारिश ही दिख रही है होती हुए अगले वेडनेसडे तक पूरी तरह से। जी हाँ, मतलब संडे से तो बहुत ही ज़्यादा बारिश मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन उससे पहले भी बारिश है, थोड़ी कम होगी बट बारिश पूरी पूरी मुझे नज़र आ रही है। सो छाते के बिना बिल्कुल मत निकलिएगा, और जो भी चीज़ आपको बारिश से निपटने में चाहिए होती है उसके बिना बिल्कुल मत निकलिएगा, क्योंकि बारिश होगी और वो नहीं भी हो रही होगी आपके इलाके में तो कहीं आपको और जाके मिल सकती है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है। और ये गाना इसलिए क्योंकि गरबा सीजन चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, और ये वाले नवरात्रे जो है जो अपने साथ गरबा लेकर आते हैं, दुर्गा पूजा लेकर आते हैं, इसमें जो गाने बजते हैं ना वो वही ढोली तारो ढोल बाज। डोंट वरी, मैं गाऊंगी नहीं, मुझे पता है मैं कभी कभी भावनाओं में बह जाती हूँ, बट डोंट वरी आई एम नॉट गोना सिंग। ऐसे के साथ ये गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ आपकी फरमाइशों की बात कर ली जाए। जी हाँ, कर ली जाए, बिल्कुल कर ली जाए, क्योंकि ये चीज हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज्यादा खास बनाती है। बेसिकली आपकी फरमाइशें, जो आप रेकमेंड करते हो गाने, जो फरमाइश करते हो, रिक्वेस्ट करते हो और कभी कभी डेडिकेट करते हो किसी को, वो गाने हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगा देते। तो आइए जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश वाया कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप जल्दी से। और यहाँ पर हमारी तरफ से एक और गाना आप सब के लिए, जो कि आपको ये फेस्टिविटीज का एहसास और भी अच्छे से करवाने वाला है।

0: जी हाँ दोस्तों, कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और सोशल मीडिया चलाते चलाते मेरे आंखों के सामने एक मीम आता है जो इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था कि मुझे लगा मेरे लिसनर्स कहाँ है मेरे लिसनर्स, मुझे उनके साथ ये शेयर करना है। तो फाइनली मेरे लिसनर्स यहाँ आ गए हैं, मैं भी आ गई हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने एग्जैक्टली क्या देखा, क्या पढ़ा। जी हाँ, वहाँ लिखा हुआ था कि व्हाई आर द पिरामिड्स इन इजिप्ट। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, व्हाई आर द पिरामिड्स इन इजिप्ट, बिकॉज दे आर टू बिग टू ट्रांसपोर्ट टू ब्रिटिश म्यूजियम। भाई बात तो सही है, वो इतने बड़े हैं कि उनको ब्रिटिश म्यूजियम में ट्रांसपोर्ट किया नहीं जा सकता। अदरवाइज पिरामिड्स जो है वो इजिप्ट में नहीं होते, ब्रिटिश म्यूजियम में होते। बात एंड आज लाइक या दैट्स ट्रू, जो भी अच्छी चीज है वो आपको ब्रिटिश म्यूजियम में दिखती है क्योंकि उन्होंने लूटा पार्टी इतनी करी है। अब उनका बस चलता तो वो पिरामिड्स को भी ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचा देते। ये तो अच्छी बात है कि पिरामिड्स हैं ही इतने बड़े कि उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता था, तो इजिप्ट वालों के पास कुछ तो बच गया। आई मीन बाकी कंट्रीज अपना हिसाब किताब कर सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट पिरामिड्स जो है वो बच गए हैं और इजिप्ट वालों की चीज जो है वो बच गई है। बाकी लोग मैं कहती हूँ अभी जाइए और अपना हिसाब किताब कीजिए। एंड आई एम टेलिंग ऑल द कंट्रीज बिकॉज आपका बहुत सारा माल ब्रिटिश म्यूजियम में ही पड़ा है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ आपको बताइए, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, गरबा के बारे में हम बात कर रहे हैं और भी चीजों के बारे में बात होगी, लेकिन आज अभी आज का दिन यानी कि जो तीसरा दिन है नवरात्रे का वो होता है माँ चंद्र घंटा का। जी हाँ, सो माँ चंद्र घंटा का आज दिन है एंड अगेन मैं यही कहूंगी कि माता रानी आपकी सारे सपने पूरे करें, आपके घर में खुशियां लेकर आए, आपके जिंदगी में ब्लेसिंग्स लेकर आए। जी हाँ, आप स्वस्थ रहें, आप हेल्दी रहें, आप वेल्दी भी रहें और ये सारी की सारी खुशियां माता रानी आपको प्रदान करें। हम यही कामना करते हैं आपके लिए। दोस्तों नवरात्रे जो है ना एक बहुत ही स्पेशल पीरियड होता है, मतलब एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है ऐसा कहा जाता है और इस एनर्जी को अगर आप सोक इन करेंगे तो अच्छा फील होता है। आप स्पिरिचुअली जो है वो ग्रो करते हैं, आप उस एनर्जी को लिटरली चैनल कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्टिव चीज में। जी हाँ, ये 9 दिन सिर्फ 9 दिन नहीं होते हैं, ये 9 रातें सिर्फ 9 रातें नहीं होती हैं, क्योंकि इन रातों में, इन दिनों में जो एनर्जीज होती हैं वो एकदम पीक पे होती हैं और आपको तो पता ही है कि हमारा यूनिवर्स एनर्जी पर काम करता है। सो अगेन, जब भी आप जाते हैं ऐसे में, मंदिर जाते हैं, नवरात्रे पे मंदिर में जाते हैं, तो वो एनर्जीज जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है। आप उन एनर्जीज को चैनल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स जो है, अगर आप कोई भी चीज नहीं समझते हैं तो सिर्फ एनर्जी को समझिए, क्योंकि ये चीजें, ये दिन आपके लिए वही एनर्जी लेकर आते हैं। अगेन मैं यही कामना करूंगी कि माता रानी आपके घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और एक और गाना आप सबके लिए यहाँ पर मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है एक भालू की। जी हाँ, एक भालू जो कि बेचारा नॉर्मल भालू था, मतलब वो पोलर बेयर नहीं था, नॉर्मल जो ब्राउन कलर के ब्लैक कलर के भालू होते हैं वैसा ही वो दिखता था। बेचारे के साथ गड़बड़ ऐसी हो गई कि उसका रंग चेंज हो गया क्योंकि उसकी म्यूटेशन हो गई, और म्यूटेशन के बाद उसका रंग पोलर बेयर जैसा वाइट हो गया। अब जब वो जंगल, जिस जंगल में रह रहा था, उस जंगल के पास से एक एनवायरमेंटलिस्ट गुजरती है तो उसे लगता है कि अरे ये तो पोलर बेयर है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ तो इसे अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ से इसे ले जाना चाहिए। जी हाँ, कहानी बहुत दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। वो हेलीकॉप्टर का इंतजाम करती है और उसको वहां से ले जाकर एक ठंडी सी बर्फीली जगहों पर भेज दिया जाता है। अब जहां वहां पर उसे भेजा जाता है तो वो कोई पोलर बेयर तो होता नहीं है, वो एक नॉर्मल भालू होता है, राइट। वो वहां पर उसे ठंड लग रही होती है, वो कांप रहा होता है, और जो ऑब्जर्वर होते हैं वो वहां पर, वो उसे देखते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसा भालू है यार, कैसा पोलर बेयर है, यहां कांप क्यों रहा है। जी हाँ, बस फिर क्या है, वो देखते हैं और थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो एल्बिनो है, मतलब ये वो भालू है जिसकी म्यूटेशन हो गई है और इसका रंग चेंज हो गया है, ये नॉर्मल ही भालू है, ये पोलर बेयर नहीं है। वो वहां से उसे फिर से रेस्क्यू करवाते हैं और एक नए जंगल में छोड़ देते हैं। अच्छा, अब गलती ये हो जाती है कि वो उसे नए जंगल में छोड़ते हैं, पुराने जंगल में नहीं छोड़ते जहां से वो आया था। नए जंगल में उसे रखा जाता है और ऑफ कोर्स उसका रंग जो है वो अभी भी वैसा ही पोलर वेयर जैसा होता है। अब जो वहां पर नए जंगल में पहले से जो फॉरेस्ट ऑफिसर और ऑब्जर्वर्स थे उनको तो पता है, लेकिन फिर से जो नए लोग हैं उनको वो नहीं पता है। वो फिर से कोई नया एनवायरमेंटलिस्ट वहां से गुजरता है और वहां पे वो उस भालू को देखता है, वो फिर से वहां से उसको उठा के नॉर्थ पोल की तरफ भेज देते हैं। उनको लगता है कि अरे अरे, ये क्या बात हो गई, ये कैसे हो सकता है, मतलब ये तो नॉर्मल भालू है, मतलब ये तो पोलर बेयर है, ये इस जंगल में कैसे रहेगा। जी हाँ, अब उस नए जंगल से भी उसे उठा के नॉर्थ पोल भेज दिया जाता है। नॉर्थ पोल में जब वो दो तीन दिन रुकता है तो वो इतना कांपता है कि जो ऑब्जर्वर्स थे वो खुद उन्हें कॉल करते हैं, मतलब अपने हायर अथॉरिटीज को कॉल करते हैं कि भाई यहाँ पे तो एक भालू आया है और बहुत कांप रहा है, उसे बहुत ठंड लग रही है और ऐसा लग रहा है कि वो मर जाएगा अभी थोड़ी देर में ही अगर ऐसे रखा गया। फिर उन्हें फिर से पता चलता है कि ना ना ना ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ये तो वही भालू है जो कि लेकर आया गया था, जिसकी म्यूटेशन हो गई है, जो एल्बिनो है, और बेसिकली वो नॉर्थ पोल में रहने लायक है ही नहीं, वो एक ऐसा भालू है जो कि नॉर्मल जगह वाला भालू है। अच्छा, फिर से उसे जो है वो ले जाया जाता है और एक नॉर्मल जंगल में, नए जंगल में फिर से छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार वो एक चीज करते हैं, उन्हें पता था कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी और ये दो से चार बार, मतलब चार बार सेम गड़बड़ कैसे हो सकती है, राइट। तो वो क्या करते हैं, उस पर भूरे रंग का यानी कि ब्राउन कलर का कलर स्प्रे कर देते हैं और फिर से ब्राउन बना देते हैं। पर बात गड़बड़ इसलिए फिर से हो जाती है क्योंकि उसकी म्यूटेशन हो चुकी है और वो कलर तो उसका वाइट ही है, जी हाँ, नॉर्थ पोल में रहने वाले पोलर बेयर जैसा। तो बारिश होती है, उसका कलर फिर से उड़ जाता है और फिर से उसके साथ वही कहानी हो जाती है फिर से। इमेजिन, इसका कोई अंत नहीं था जब तक 5-6 बार उसके साथ ऐसा नहीं होता, फिर सबको पता चल जाता है कि नहीं, ये एल्बिनो है, ये एक नॉर्मल भालू है और इसको ठंड में नहीं भेजना है क्योंकि इसका रंग चेंज हो गया है पर इसकी तस्वीर चेंज नहीं हुई है, ये अभी भी नॉर्मल भालू ही है, रंग की वजह से हम इसे नॉर्थ पोल नहीं छोड़ सकते या बर्फीले इलाकों में नहीं छोड़ सकते। अच्छा, जो लास्ट टाइम होता है तो उसको जो है वो एक जू में छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, और उस जू में भी उसको छोड़ा जाता है नॉर्मल जगह पर नहीं, बल्कि नॉर्थ पोल से लाए हुए पोलर बेयर्स के केज में उसे छोड़ा जाता है। अब वो भालू भी सोच रहा होगा कि कुछ भी आए ऐसी मदद तो ना आए, मतलब आप खुद सोचिए कि स्टार्टिंग होती है, उसको भेज दिया जाता है, म्यूटेशन हो जाती है बेचारे की, बर्फीले इलाके में भेज दिया जाता है, वहां पर उसके मतलब लिटरली उसे ठंड लगती है कांपते हुए देखे, उसे फिर से नए जंगल में भेज दिया जाता है और फिर से सबको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो भालू नॉर्थ पोल में रहने लायक है तो उसे नॉर्थ पोल भेज दिया जाता है। अच्छा, वहां पे ये मरने वाली हालत में पहुंच जाता है, उसको फिर से लाया जाता है, अब उसे जू में रखा जाता है कलर चेंज करके, लेकिन कलर फिर से उड़ जाता है। अब जू में जब इसे लेकर जाया जाता है तो उसे लिटरली पोलर बेयर्स के केज में रखा जाता है, वहां पे भी वो इतना परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि क्या ही चल रहा है और क्यों ही चल रहा है, मतलब कुछ भी आए, कुछ भी हो जिंदगी में पर ऐसी मदद ना आए। और ये कहानी इतनी ज्यादा फनी है, बट आपको लग रहा होगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, दिस इज अ रियल रियल रियल स्टोरी। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।
1: यार सब ठीक है बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस मेडांटा सी के बिरला आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओम्सऑर्ग स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively.

0: effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों वही एंथ्रोपिक ने कुछ नया कर दिया है, वही कुछ नया जो कि अभी तक किसी भी और AI प्लेटफॉर्म या AI कंपनी ने नहीं किया है. वेल, एंथ्रोपिक ने बैन कर दिया है यूजर्स को फ्रॉम यूजिंग एब्यूजिव और क्रूअल लैंग्वेज और एब्यूजिव और क्रूअल बिहेवियर टूवर्ड्स AI चैटबॉट. जी हाँ, सो एंथ्रोपिक का एक बहुत ही बड़ा जो है वो AI सिस्टम है एंड दैट इज क्लॉड, और उस पे लोग जब भी एब्यूजिव भाषा का इस्तेमाल करेंगे या क्रूअल बिहेवियर से रिलेटेड बातें करेंगे तो अब वो चैटबॉट जो है वो खुद उस कॉन्वर्सेशन को एंड कर सकता है. ये हक उन्होंने दे दिया है अपने चैटबॉट्स को. जी हाँ, आपने सही सुना. इससे पहले जब भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, आपको ऐसा लगता था कि क्यों नहीं समझ रहा ये चैटबॉट आपकी बात, तो आप कभी ना कभी तो आपने थोड़ा बहुत कर्सिंग की सिचुएशन को फॉलो किया होगा. और अगर आपने नहीं भी किया है तो देयर आर पीपल जो करते हैं, मतलब वो गालियां दे देते हैं, लिटरली वो गालियां लिख देते हैं चैटबॉट्स को. वो फ्रस्ट्रेटेड कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देते हैं, बुरी बुरी चीजें लिखते हैं. सो ये वो ना कर पाए इसी के लिए एंथ्रोपिक ने कह दिया है कि दे आर बैनिंग एब्यूजिव और क्रूअल बिहेवियर टू वर्ड्स इट्स AI चैटबॉट क्लॉड. जी हाँ, अब ये चीज जो है वो बहुत ही डिबेटेबल हो गई है. बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे हैं. कुछ कह रहे हैं कि AI वेलफेयर के मामले में इट्स अ गुड थिंग. या ऑफकोर्स, मतलब ठीक है कि वो सांस नहीं ले सकते, वो जिंदा नहीं है चीजें, पर दैट डजंट मीन कि हमें उनके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए. आई मीन आई नो एंड वी नो कि इट्स अ चैटबॉट, इट्स नॉट अ रियल थिंग, इट्स नॉट अ थिंग विद फीलिंग्स. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने व्यवहार को सुधारना नहीं चाहिए, मतलब अच्छे व्यवहार में नहीं रहना चाहिए. एंड कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ना ना ना ना ना, ये तो गलत है, क्योंकि इससे आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि उनमें भी हमारी तरह फीलिंग्स हैं. सो हम अगर उनको गाली नहीं दे सकते, हम उनके साथ अगर गलत व्यवहार नहीं कर सकते, कुछ गलत उन्हें कह नहीं सकते, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनमें उनको आप ह्यूमंस की तरह दर्जा दे रहे हो, मतलब उनके पास ह्यूमन फीलिंग्स है जो कि नहीं है. लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो देयर आर मेनी चैटबॉट्स जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब वो इन चीजों को फिगर आउट कर लेते हैं. मतलब आप खुद सोचिए कि कुछ चैटबॉट्स ने अपना ही एक प्लेटफॉर्म बना लिया और वो एक दूसरे से बात कर रहे थे खुद से ही, तो आप गेस कीजिए कि क्या उनमें समझ है या नहीं है. एंड व्हेन आई से समझ, ऑफ कोर्स इट्स नॉट द समझ जो कि नेचुरली आती है, बट उनमें डेटाबेस को जो उन्होंने इतने सारे रीड किए हैं, इतने सारे डेटाबेसेस और इतने सारे स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद उनमें वो चीज आई है कि ओह ये चीज तो गलत है, ओह ये चीज तो सही है. सो या कुछ चीजों के मामले में वो डिसीजंस ले सकते हैं एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद एंथ्रोपिक. लेकिन एंथ्रोपिक ने सीधा सीधा कह दिया कि देखो भाई, तुम्हें चैट जीपीटी के साथ कुछ और करना है, तुम्हें जेमिनी के साथ कुछ भी करना है, तुम्हें कोपायलट के साथ कुछ भी, मतलब वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट. बट अगर आप क्लॉड में बात कर रहे हो, हमारे चैटबॉट से बात कर रहे हो, क्लॉड को यूज कर रहे हो, तो आपको अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको क्रूअल बिहेवियर और अब्यूजिव लैंग्वेज से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारा चैटबॉट जो है वो खुद ही आपकी ये कॉन्वर्सेशन एंड करेगा और फिर वो आपसे बात नहीं करेगा. या दैट्स व्हाट हैपेंड. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से,

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है खबरों के बारे में बात करने का। जी हाँ, खबरों की तरफ रुक करने का वक्त हो गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की एक मुख्य खबर से। वेल ऑफ कोर्स, भारत में बहुत कुछ चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि पिछले महीने भी चल रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर महीने प्रोटेस्ट हो सकते हैं, बिकॉज उन्हें लहू मुंह लग गया है, मतलब खून उनके मुंह लग गया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द जेंजी पीपल, या द सो कॉल्ड जेंजी पीपल। नाउ यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट दैट डजंट मीन कि आप हल्ला शेरी पे उतर आओ। लाइक लिटरली ये सारी की सारी चीज़ें आपको सबूत पेश करने हैं, आपको सारी चीज़ें करनी है जिससे सिस्टमैटिकली वो चीज़ें काम करें, बट अगर आप नहीं करते हो, अगर आप हुड़दंग मचाते हो, देन इट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले पीएम मोदी क्या बोलते हैं। पीएम मोदी बोले भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ मुद्दों पर खुलकर बहस होती है। वेल मिस्टर मोदी, मुझे नहीं लगता यहाँ पे लोगों को समझ आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है। पीएम मोदी ने ये बात मंगलवार को दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा। पीएम ने कहा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, भारत में 100 से अधिक भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के दौर में भारत में 500 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर जनता चर्चा करती है, इसमें डिजिटल पावर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते थे, लेकिन अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में पावर की इस भागदौड़ में भारत एक अलग मिजाज लेकर चल रहा है, और इसका गवाह ये दशक भी है। 21वीं सदी का ये दशक अभूतपूर्व ग्लोबल चुनौतियां लेकर आया है। हमने महामारी देखी है, फिर दुनिया के अलग अलग देशों में युद्ध छिड़ गया, जैसे इतना ही काफी नहीं था। ट्रेड हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, एनर्जी सप्लाई हो, इनमें भी अड़चने आ रही हैं। दुनिया एक संकट से बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है, तब तक एक नया संकट आ जाता है। जिन चीजों ने कभी दुनिया को जोड़ा था वही आज हथियार बन रही हैं। सप्लाई चेन हो, एनर्जी हो, मिनरल्स हो, पेमेंट हो या तकनीक हो, ये दबाव और दबदबे का माध्यम बन रही है। बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन से जो रूट्स बने थे वे कब और कहां चौक पॉइंट्स बन गए, ये हम देख रहे हैं। इन सबके बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में काम करने के तरीके बदल रही है। अनेक देशों में एजिंग से जुड़े चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, अब यहां पर सिचुएशन ये है कि एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं जो कि बात कर रही थी इसके बारे में, और कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी तो सोशल मीडिया चलाते चलाते उनकी रील मेरे सामने आती है, एंड देन शी वाज लाइक कि यू नो व्हाट, जो कंट्री में हो रहा है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, कि जो विपक्ष है यानी कि जो ओपोजिशन है वो ये कह रहा है कि हमको ज्ञानेश कुमार, जो कि बेसिकली इलेक्शन कमीशन चीफ रहे हैं, उनका इस्तीफा चाहिए क्योंकि उन्होंने अपेरेंटली गड़बड़ की, उन्होंने SIR लाया। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के वोट कट गए, ऑफकोर्स उसमें बहुत सारे लोगों के कटने भी चाहिए थे, लेकिन उनका कहना था कि कुछ लोगों के वोट उन्होंने ऐसे ही काट दिए, सरकार गलत कर रही है। जी हाँ, उन्होंने एक और चीज कही, और कोट एंड कोट उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हमें ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहिए, उसके बाद हमें अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, उसके बाद हमें पीएम मोदी का इस्तीफा चाहिए। एंड दैट वुमन वाज लाइक कि ओके ठीक है, मान लिया कि आपको इस्तीफा चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती, पर फिर उसके बाद का प्लान क्या है। उसके बाद के प्लान के बारे में जब उनसे पूछा गया, यानी कि जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनसे पूछा गया, देन दे आर लाइक नहीं, बाद का प्लान कुछ भी नहीं है, बस यही प्लान है कि हमको इस्तीफा चाहिए। अरे भाई, कंट्री कौन चलाएगा, तुम्हारे चाचा मामा आएंगे चलाने ऊपर से, या क्या होगा, मतलब क्या होगा। बिकॉज यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, कि पीपल डोंट टेक सीरियसली इस जनता को, इतनी बड़ी अमाउंट में जो ये जनता है, इसको लीड करना इज नॉट अ ईजी टास्क। एंड वी आर नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट इज दूध की धुली हुई, ऑफकोर्स इट्स नॉट, बट एटलीस्ट ऑपोजिशन के पास फिर बाद की प्लानिंग भी तो होनी चाहिए। ठीक है, आपको मिल गया, आपको मिल गया जो आपको चाहिए है, बट उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होगा, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मतलब हाँ बताइए, अपनी इच्छाएं बताइए, क्योंकि आप सिर्फ
इस्तीफे तक की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कंट्री कैसे चलेगी? केओस जो होगा उसका क्या होगा? लोग जो जिंदगी जी रहे हैं अभी, एटलीस्ट जैसे जी रहे हैं, वो क्या वैसे भी जी पाएंगे? उतने में भी वो कामयाब हो पाएंगे? एंड यू नो दैट इज द फनी फैक्ट, एंड आई वॉज लाइक या दैट्स ट्रू। द प्रॉब्लम इज नॉट कि सरकार बुरी नहीं है, सरकार अच्छी है, ऐसा कुछ है। नो, द प्रॉब्लम इज कि ऑपोजिशन क्लियर नहीं है कि ठीक है, अगर आप जो बोल रहे हो वो चीज सच भी हो जाती है, आप प्रूव कर देते हो एविडेंसेस के साथ, बट उसके बाद क्या? आपको इस्तीफे मिल जाते हैं, आपको प्रधानमंत्री मोदी का भी इस्तीफा मिल जाता है, लेकिन उसके बाद क्या? वो कोई नहीं बता रहा। इतने सारे लोग, इतनी सारी जनता अगर केओस में जाती है, इतनी बड़ी कंट्री केओस में जाती है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अभी ही ऑलरेडी इतना क्योटिक माहौल जो है वो वहां पर चल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि ओके ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा? जी हाँ, दैट इज दैट्स हिलेरियस एक्चुअली। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
3: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं? तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
4: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
5: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निबिया के साथ। दोस्तों, वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेही से हुई मुलाकात के बारे में क्या बताया। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेही के साथ हुई 7 घंटे की मुलाकात के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस बैठक के दौरान देश को चलाने में आ रही समस्या और प्रशासनिक चुनौतियों पर चर्चा की गई। मसूद पजश्कियान ने ईरान में विश्वविद्यालयों के उद्घाटन समारोह और नए शैक्षणिक स्तर की शुरुआत के मौके पर यह बात कही। यह दूसरी बार है जब उन्होंने मुस्तफा खामनेही के साथ 7 घंटे तक चली बैठक का जिक्र किया। इससे पहले उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 7 महीने के दौरान उनकी नए सर्वोच्च नेता से 2 बार मुलाकात हुई थी। राष्ट्रपति पजश्कियान ने अपने संबोधन में कहा कि समस्या ये नहीं है कि देश में संसाधनों की कमी है, बल्कि विशेषज्ञों की कमी और योजनाओं को लागू करने की इच्छा शक्ति का अभाव है। उन्होंने सरकारी कंपनियों के कामकाज पर भी सवाल उठाए। पजेशकियान ने कहा कि कुछ सरकारी कंपनियों में जो हो रहा है उसे सही मैनेजमेंट नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ईरान की सार्वजनिक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। वहीं बीबीसी फारसी के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति के सक्षम और योग्य लोगों को अहम पदों पर नियुक्त करने में आने वाली मुश्किलों का भी मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया पर हमले जो है वो अभी भी हो रहे हैं हूतियों से। जी हाँ, और ऐसा कहा जाता है कि हूतियों को सहायता देता है, बैक करता है ईरान। और एक और नई चीज जो उन्होंने कह दी, उन्होंने कहा है कि जल्द ही अगर अमेरिका के साथ समझौता नहीं हुआ तो वो अमेरिका के डेटा सेंटर्स जो कि मिडिल ईस्ट में है उन पर हमले चालू कर देंगे और उसके बाद अमेरिका को जो नुकसान होने वाला है उसके बारे में उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। सो ईरान कह रहा है कि अमेरिका को उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। जी हाँ, अमेरिका कितना भी कहे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, बट ईरान उन्हें लिटरली अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मिस्टर ट्रंप के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से कुछ कहा है. और वो क्या कहा है आइए जरा आपको बताते हैं. और उसके अलावा उन्होंने भी बहुत कुछ किया है कुछ दिनों में, सो उसके बारे में भी बात करेंगे. सबसे पहले किम जोंग से मुलाकात करने के सवाल पर बोले ट्रंप. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनसे मुलाकात कर सकते हैं. वाह, क्या बात है. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलीपींस में आसियान शिखर सम्मेलन और चीन के शेंजन में अपेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो इस एशियाई दौरे के वक्त किम जोंग उनसे मिलेंगे. इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, मैं उनसे मिल सकता हूं, ये एक रोमांचक मुलाकात होगी, मेरी उनके साथ अच्छी बनती है. गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान किम जोंग के साथ 3 बार आमने सामने मुलाकात की. पहली जून 2018, दूसरी फरवरी 2019 और तीसरी जून 2019 में हुई. मैं क्या सोच रही हूँ ना, क्या हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लें इस टाइम को, ताकि ट्रंप का टेन्योर जो है वो खुद ही खत्म हो जाए और फिर हम उस वाले टाइम में एंटर कर जाए सीधा. बिकॉज ये जो बीच वाला वक्त है ना, ये सहा नहीं जा रहा. बिकॉज दिस इज कुछ भी चल रहा है. जी हाँ, सो फास्ट फॉरवर्ड करके अगर हम वो वाले वक्त में पहुंच जाए जहाँ पे इनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है, इनका इलेक्शंस वाला टाइम है और वो इलेक्शंस हार गए, वाह, अगर ये हो जाएगा तो मजा आ जाएगा. पर चलिए, इसके अलावा उन्होंने क्या किया है. वेल, डबल स्टैंडर्ड्स के तो वो लिटरली देवता हैं, एंड दैट्स व्हाट ही डिड. सो आप सबको पता है कि रशिया से कोई भी एनर्जी वाली चीज, यानी कि चाहे फिर वो गैस हो या ऑयल हो, वो जो भी कंट्री खरीद रही थी उस पर सैंक्शंस लगा रहा था अमेरिका. और ये काफी टाइम से चल रहा है. अमेरिका ने भारत को भी इसी का शिकार बनाया है काफी वक्त से, लेकिन भारत ने फिर भी वो लेना बंद नहीं किया. दैट इज वन थिंग, बिकॉज भारत का कहना था, इंडिया का कहना था कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से किसी के साथ व्यापार करेंगे, नॉट बिकॉज यूरोप कुछ चाहता है या अमेरिका कुछ चाहता है. या उन्होंने हमेशा से इस चीज को एकदम साफ साफ शब्दों में कहा है. लेकिन यहां पर ट्रंप ये कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, आप तो रशिया यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहे हो. लिटरली भारत के पैसे जो कि वो तेल खरीदता है और फिर रशिया को देता है, उसी से ही तो यूक्रेन वॉर चल रही है, नहीं तो खत्म होगी होती. जी हाँ, ऐसा कह देते हैं. लेकिन अभी 2 दिन पहले उन्होंने कांड कर दिया है. आई एम नॉट गोना से काम बिकॉज इट्स अ कांड. जी हाँ, एंड कांड इज द वर्ड वी यूज व्हेन जो बहुत कारनामा जो है ना वो बहुत ही खतरनाक हो, इन ऑल द बैड सेंस. सो दैट्स व्हाट ही डिड. सो उन्होंने रशिया के साथ एक डील साइन की है, क्योंकि अपेरेंटली अमेरिका में डीजल प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो उनको ठीक करने के लिए उन्होंने रशिया के साथ डील कर ली है. अब वो रशिया से डीजल खरीद रहे हैं. जी हाँ, आपने सही सुना. सो पूरी दुनिया पर सैंक्शन लगाने के बाद कि अरे अरे नहीं नहीं, यूक्रेन वॉर को तुमको फ्यूल नहीं करना है, तुमको पैसे नहीं देने हैं रशिया को, रशिया के साथ तुमने कोई भी वार्ता नहीं करनी है, लेना देना नहीं करना है, ये सब नहीं चलेगा, मैं सैंक्शन लगा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा. और फिर उसके बाद खुद ही वो कर दिया. क्या कहूं मैं इस इंसान को. और फिर जब उनसे प्रेस ने पूछा कि ऐसा ऐसा आपने किया, देन इज लाइक यू नो व्हाट, सो रशियन डीजल जो है वो अच्छे से यहां पर आएगा, यहां पर जो गैस प्राइसेस हैं, जो डीजल प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे. अरे भाई, तो तुमने बाकी कंट्रीज को क्यों एड़ा दिया हुआ था, लिटरली वाई. जी हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, वो ट्रंप है तो वो कुछ भी कर सकते हैं. आपको पता ही है कि नवी पिल्ले जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की एक्स जज एंड वकील रह चुकी हैं, उनको इस बार जो है वो मिल गया है नोबेल पीस प्राइज, और उसकी वजह से फिर से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खराब हो गया. तो उन्होंने एक बहुत बड़ा चिट्ठा जो है वो लिखा हुआ था ऑफकोर्स ट्रूथ सोशल पर. और वो चिट्ठा क्या था, लेट मी रीड फॉर यू बिकॉज दिस इज रियली फनी. सो उन्होंने लिखा हुआ था कि दिस इज द वुमेन हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज ओवर द ग्रेट यूनाइटेड States of America, whose representative Emmy settled 8 wars and many other things. I know nothing about this woman, and neither does anyone else. In fact, to the best of my knowledge, no one ever heard of her other than the fact that she very obviously hates Israel. जी हाँ, उसके आगे उन्होंने लिखा, आई डोंट नो वट द वुमेन हैज डन, आई सेटल्ड 8 wars विद लेटर्स बींग सेंट फ्रॉम एवरी प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द कंट्रीज दैट आई हेल्प टू द नॉर्वियन नोवल कमेटी, एंड आई एम अबाउट टू सेटल और विन 2 मोर, ईरान एंड रशिया यूक्रेन. माइंड यू, ईरान वाली वॉर उन्होंने खुद ही शुरू की है. जी हाँ, उसके बाद वो लिखते हैं, दे आर बोथ हैपनिंग एट ब्रेकनेक स्पीड, बट फॉरगेट देम, इट्स द 8 दैट आई हैव ऑलरेडी सेटल्ड.
any one of which in particular Pakistan and India would be far more than necessary to win the Nobel Peace Prize. In actuality, I should have won 8 Nobel Prizes. Peace Prizes, not just one. The 8 wars are. जी हाँ, ये लिखा है उन्होंने. I know you wanna laugh, so you can laugh. I'm also gonna laugh because this is so funny. मतलब इतना rant कौन करता है? You know what? Comments में बड़े सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ था. उन्होंने लिखा हुआ था कि it said that as humans get older, they become like kids. This 80-year-old grandpa is as good as toddler fighting for his brother's toys. I'm not gonna say anything. Now, you know what? Aging is not problem, but आप मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोगों ने इन्हें चुना क्यों था सबसे पहले. तो ऑफकोर्स जो लोग हैं कुछ जो चाहते थे कि अमेरिका में अमेरिकन लोग ही हो, ऐसा हो वैसा हो, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चुना है एंड दैट इज द रीजन वो इस सत्ता में भी आए हैं. बट द थिंग इज कि कितना रेंट करता है ये इंसान. जी हाँ, मतलब बोल रहे हैं कि यू नो वॉट, मैं तो जानता भी नहीं इस औरत को जिसको नोबेल पीस प्राइज दिया है, और मुझे तो 8 नोबेल पीस प्राइज मिलने चाहिए, नॉट जस्ट वन. मैंने 8 वॉर्स रुकवाई हैं और फिर अपने आप एक मेगा शुरू भी कर दी है. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, बिकॉज आई थिंक गाना सुनना बेटर रहेगा ये रैंटिंग से. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर एक और जबरदस्ती चीज हुई है, क्योंकि गरबा सीजन जो है वो आ गया है। लोग गरबा कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लिबास में जाकर गरबा कर रहे हैं। मिठाई खाने को मिल रही है, सुंदर बनने को मिल रहा है, और वो स्टेप्स करने को मिल रहे हैं जिनकी तैयारी पूरा का पूरा साल हम लोग करते हैं। वेल ऑफकोर्स कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार हम तो खुद ही पैदा ही गरबा सीख के हुए थे। मतलब हम लोगों को हमेशा से गरबा आता है। वी डोंट हैव टू लर्न, वी डोंट नीड टू लर्न। रियाज से भी कुछ लोग हैं, बिकॉज़ आई नो सम पीपल एंड या दैट्स फनी। आई नो बट द थिंग इज कि यहां पर सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा फनी हो गई है, क्योंकि अपेरेंटली गरबा पंडाल्स में गरबा करने के लिए ह्यूमंस के साथ साथ रोबोट्स भी आए हैं। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि एलोजी, यही देखना रह गया सी। जी हाँ, ऑफकोर्स यही देखना रह गया था, क्योंकि ये चीज बहुत जबरदस्त लग रही है। लोग जो है इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बेटा रुको रुको, अगले 10 साल में तुम्हें रोबोट्स ही पंडाल में गरबा करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इंसान भाग जाएंगे, क्योंकि रोबोट AI ये सब कुछ इंसानों का पानी पी जाएंगे, जमीनें डाटा सेंटर्स को मिल जाएंगी, तो फिर बचा क्या इंसानों के लिए? इंसानों के लिए तो बचा ही नहीं कुछ, तो ऐसे में गरबा कौन करेगा? ऑफकोर्स डिंक चिक्का ला ला ला ला, या ऑफकोर्स रोबोट्स। सो रोबोट्स जो हैं वो बड़े ही खूबसूरत तरीके से जो है वो पंडाल्स में गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लोग बोलोगे कि अच्छा ठीक है, बट यू नो व्हाट द फनी फैक्ट इज एंड द मोस्ट दिलचस्प पार्ट वॉज कि उनको कपड़े पहनाए गए थे। मतलब वो जो पूरा प्यारा सा चोला पहनाया जाता है ना, आई डोंट नो अगर आपने कभी गुजराती एथनिक ड्रेसेस देखी हैं जो कि बंदे लोग पहनते हैं, तो वैसी ही पगड़ी जो है उस रोबोट को पहनाई हुई थी, उसको वो वैसा चोला सा घाघरा सा भी पहनाया हुआ था, और वो बड़े ही मजे से कर रहा था, और वो गरबा के पूरे स्टेप्स अच्छे से कर रहा था, और उसको देख कर कुछ लोग जो है उसको सीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी गड़बड़ कर रहे थे। आप तो पता ही, इंसान है ही गलतियों का पुतला। तो ऑफकोर्स आप लोग बोलोगे कि It's 2026, रोबोट्स को भी गरबा करने आ गया है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा? जी हाँ, मैं कहती हूँ कि गरबा सीखने की ऐसा जरूरत नहीं है, बस किसी अच्छे से बंदे को फॉलो करो, जो भी वो कर रहा है उसको फॉलो करो, वो आप कर दो और वही करना है आपको। सो इस गरबा सीजन अगर आप भी गरबे पे जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ करना क्या है आपको। सबसे पहले किसी अनाड़ी दोस्त जिसको गरबा बिल्कुल नहीं आता उससे थोड़ा सा दूरी बनाइए, एंड बनाई से दूरी मतलब ये नहीं है कि उसको पीछे छोड़ के भाग जाइए, उसको रखिए लेकिन ध्यान उसके स्टेप्स पर मत दीजिए, स्टेप उसके देखिए जो कि सबसे अच्छा गरबा कर रहा है पूरे के पूरे सर्कल में, उसको फॉलो कीजिए, उसकी लीड फॉलो कीजिए और फिर देखिए आप कितने अच्छे। यू नो व्हाट, गरबा स्टेप्स जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लॉजिकली अगर देखा जाए, बस आपको घूमना है, उछलना है, घूमना है, ताली मारनी है, उछलना है, घूमना है, ताली मारनी है। आप लोग बोलोगे कि वाह निव्या वाह, जितना इजी तुम इसे साउंड करवा रही हो उतना इजी नहीं होता है बेटा। चलिए ठीक है, इतना इजी नहीं होता बट इतना मुश्किल भी नहीं होता। इफ रॉबर्ट कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, और ये गाना बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि जो मौसम है उसके हिसाब से ये गाना बनता है।

दोस्तों, इतना तो मुझे पता चल गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी म्यूजियम्स में नहीं है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर है। नाउ कल ही की बात है, सोशल मीडिया चलाते चलाते मेरे सामने एक मीम आता है और वो मीम जो है एक बहुत ही फेमस चैनल का है और वो चैनल जो है वो एलियंस को दिखाता है जोक्स मारता हुआ। जी हाँ, और वो मीम उन्हीं का ही है। उसमें बताया हुआ था कि आई एम गना चेंज माई नेम टू नोबडी। जी हाँ, सो वो कह रहा था, दूसरे वाले एक एलियन दूसरे वाले एलियन से कह रहा था कि आई एम गना चेंज माई यूजर नेम टू नोबडी। जी हाँ, नोबडी। तो वो दूसरा वाला एलियन उससे पूछता है कि क्यों, तो वो सामने वाला एलियन उससे कहता है कि बिकॉज व्हेनेवर समवन पोस्ट समथिंग स्टूपिड आई वॉन्ट टू लुक लाइक नोबडी लाइक्स इट। जी हाँ, मतलब कि जब कोई कुछ स्टूपिड जो है वो डालेगा और कुछ स्टूपिड जो है पोस्ट किया होगा किसी ने, तो मैं उसे लाइक कर दूंगा और मेरा यूजर नेम होगा नोबडी, तो वहां पे आएगा लिखा हुआ नोबडी लाइक्स इट। या एंड आई वाज लाइक, या दैट्स ट्रू, दैट इज एक्चुअली ट्रू। अपना यूजर नेम जो है वो एक नोबडी के नाम पे रख दो और फिर जब भी कुछ फनी सा या गड़बड़ सा या जो आपको पसंद ना आए वो किसी ने कुछ पोस्ट किया हो, तो उसे जरूर लाइक करो। और फिर जब आप उसे लाइक कर दोगे और आपका यूजर नेम होगा नोबडी, तो सामने से तो यही लिखा आएगा ना कि नोबडी लाइक्स इट। आई वाज लाइक, या दैट्स अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स जो कि हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं।

मीडिया पे देर आर मेनी थिंग्स जो हमको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हम उनका कुछ कर नहीं सकते. नाउ आई एम नॉट गोना से कि आपको हेट फैलानी चाहिए, बट आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूमरस वे ऑफ टेलिंग पीपल कि यू नो व्हाट, दिस इज नॉट समथिंग गुड. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
6: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
7: मेरे तुम्हारे सब के लिए दिवाली।
8: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेसअप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड, और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405409156, आई रिपीट 0405409156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं, दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।
9: Hi, this is Amitabh Bachchan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: Hi guys, I'm Madhvit, one of the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
12: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
13: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
15: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
16: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
17: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, तो टंटना अपनी सांसें थाम लीजिए। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा ठीक है, पर इतना ओवर ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, सांसें थामने की क्या बात है, मतलब सांस हमें लेने दो जैसे हम लेते हैं नॉर्मली एकदम सही तरीके से। चलिए ठीक है, मत कीजिए आप हर एक चीज के लिए एकदम मतलब बीट पे आ जाते, मेरे लिसनर्स जो है ना बड़े खतरनाक है, लेकिन ऑन द गुड सेंस। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच हमारे इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। लेकिन अब जो ये सेगमेंट है ये बहुत ही खास है, पुराने गाने पुराने किस्से वही होगा आपके लिए, मतलब अब आपकी फरमाइश भी जो होगी वो पुराने गानों से रिलेटेड ही हो सकती है, क्योंकि नए गाने हम आपके लिए बिल्कुल प्ले नहीं करने वाले हैं, ये डेडिकेटेड टाइम है पुराने गानों के लिए। आज एक बहुत बड़े सुपरस्टार का जन्मदिन भी है, वेल ऑफ कोर्स वो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मतलब 1940s एंड 50s के बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं। गेस करना चाहेंगे? जी हाँ, इनफैक्ट उनके भाई भी बॉलीवुड के हिंदी फिल्म जगत के सबसे बड़े अभिनेता, सिंगर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कुछ भी आप कहना चाहें वो रह चुके हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा हिंट है और उन्हीं का ये गाना भी है जिनका जन्मदिन है। चलिए, इससे ज्यादा बड़ा हिंट मैं आपको नहीं दे सकती थी। गेस कीजिए किसकी बात हो रही है। और ये गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स दी लेजेंडरी अशोक कुमार जी की। आज उन्हीं का जन्मदिन है। मैंने कहा ना, वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अदायगी, उनकी बातें और ऑफ कोर्स उनकी शख्सियत के वो किस्से आज भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि अशोक कुमार को आज हम जो है उन्हीं को सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऑफ कोर्स उन्हीं के गाने से हमने शुरुआत भी की है अपने इस सेगमेंट की। और ये वो वक्त था जब हीरो लोग अपने गाने खुद गाया करते थे। जी हाँ, जब 40s का वक्त था, 47 से पहले अशोक कुमार जो है वो ऑलरेडी सुपरस्टार थे। और ये वो वक्त था जब सिंगर्स उनके गाने नहीं गाते थे, बल्कि जो एक्टर होता था वो खुद ही अपने गाता था। और ये वो वाला वक्त था जब KL सहगल साहब हुआ करते थे और भी बड़े लेजेंडरी लोग हुआ करते थे, जो गा भी लेते थे, एक्टिंग भी कर लेते थे। और इनफैक्ट अशोक कुमार ही वो अभिनेता थे जिन्होंने एक बहुत ही यूनिक इंसिडेंट की वजह से अपनी फिल्म में रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया। और वो मौका लिटरली रफी साहब के लिए बहुत ही जबरदस्त सौगात बन गया। जी हाँ, अशोक कुमार जो हैं वो लिटरली हम सबके लिए लेजेंडरी हैं, लेकिन ऑफकोर्स वो किशोर दा के भाई भी हैं। एंड अशोक कुमार ना बहुत ही मजाकिया थे, जस्ट लाइक किशोर कुमार। ऑफकोर्स किशोर कुमार जो हैं वो थोड़े और भी ज़्यादा मजाकिया थे, मतलब वो उनसे भी डबल मजाकिया थे। बट अशोक कुमार भी कुछ कम मजाकिया नहीं हुआ करते थे। और जब अशोक कुमार ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार थे, तब किशोर कुमार बच्चे हुआ करते थे। अशोक कुमार बताते हैं कि वो बड़े ही स्टाइल से लेकर जाया करते थे किशोरदा को इधर उधर फिल्मी जगत की पार्टीज में। और किशोरदा को KL सहगल साहब की गायकी बहुत ज्यादा पसंद थी, तो वो KL सहगल से मिलवाने भी ले गए थे एक बार किशोरदा को। और इसके अलावा अशोक कुमार ने बड़ी ही फनी फनी चीजें भी जो हैं वो बताई हैं, और वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना और एक और गाना जो कि आपको प्यारा लगेगा।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777.

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अशोक कुमार की बात हो रही है, पहले हीरो और साथ में हिंदी फिल्म जगत के एंटी हीरो भी अशोक कुमार हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि अशोक कुमार का नाम कुमुदलाल गांगुली था। जी हाँ, उनका रियल नाम अशोक कुमार नहीं था, वो एक वकालत करने वाले खानदान से आते थे। जी हाँ, उनके पिता वकील थे और वो खुद भी वकील बनना चाहते थे। अशोक कुमार ने ट्राई किया वकील बनने का, लेकिन जब पहली ही परीक्षा यानी कि पहले एग्जाम में ही वो पास नहीं हो पाए तो उन्होंने वो सपना छोड़ दिया और वो बॉम्बे आ गए और वहां पर बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम किया। फिर उसके बाद 1936 का वक्त आया, यानी कि 1936 का, और एक मूवी जिसका नाम था जीवन नैया, उसमें से हीरो जो है वो एग्जिट मार जाता है और वहां पर अशोक कुमार को एज अ हीरो वहां पर कास्ट किया जाता है। इससे उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में अपने करियर की शुरुआत की। अशोक कुमार बहुत ही ज्यादा फनी इंसान थे, मतलब उनका ह्यूमर जो है वो बहुत ही जबरदस्त माना जाता था। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके, अगर आप उनके खानदान को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर चाहे अशोक कुमार हो, फिर चाहे किशोर कुमार हो, फिर चाहे उनके एक और भाई अनूप कुमार हो, सबका ह्यूमर जो है वो जबरदस्त रहा है। इनफैक्ट किशोर दा ने एक बार कहा था कि मेरे बड़े भैया मुझे बड़ा जो है वो कहते थे, डिस्करेज करते थे कि मुझे गाना नहीं गाना चाहिए था, मेरे बड़े भैया के अकॉर्डिंग मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जी हाँ, एंड अशोक कुमार ने खुद भी ये कहा है अपनी जुबानी कि अशोक ना, किशोर ना, पहले अच्छा नहीं गाता था, जब वो छोटा था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं गाता था, फिर उसको दर्द हुआ कहीं पर और उस दर्द से वो इतना रोया कि उसकी वॉइस का टेक्सचर चेंज हो गया। जब किशोर दा के सामने कोई ये कहानी बोलता था तो किशोर दा कहते थे हाँ ठीक है, मुझे पता है कि वो क्या करते थे, वो मुझे डिस्करेज करते थे। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप सबका ऐसा ही होता है, मतलब दूसरों को पंगा लेना ही है, मतलब दूसरा भाई बहन जो है अगर अच्छा करेगा तो भी उसको गड़बड़ बताना है। एंड दैट्स हाउ अशोक कुमार वॉज। लेकिन अगेन, उन्होंने ना सिर्फ एक्टिंग की दुनिया में अपना हाथ आजमाया, उन्होंने ऑफकोर्स वो लेजेंडरी थे एक्टिंग की दुनिया में, लेकिन डायरेक्शन और प्रोडक्शन की दुनिया में भी वो लेजेंडरी रहे हैं। जी हाँ, पद्म भूषण से लेके दादा साहेब फाल्के अवार्ड तक सब उन्हें मिला है। जी हाँ, आज हम उनके जन्मदिन के दिन उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वो सितारे आज भी उतनी ही चमक बिखेर रहे हैं हमारे ऊपर जितनी कि वो उस वक्त बिखेरा करते थे। ये गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन खूबसूरत है, और ये गाना जो है वो आज की शाम के लिए भी है, और खासकर अशोक कुमार का आज जन्मदिन है तो उन्हीं के भाई किशोर दा की आवाज में ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, घड़ी कर गई है इशारा। तो मैं इतना ही कहूंगी कि फेस्टिव सीजन को एंजॉय कीजिए, नवरात्रों को एंजॉय कीजिए, और हमेशा अच्छी चीजें सोचिए, अच्छी चीजें बोलिए, खासकर इन 9 दिनों में, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, जो आप बोलते हैं वो यूनिवर्स सुनता है। तो अच्छी चीजें बोलिए ताकि अच्छी चीजें ही यूनिवर्स और माता रानी आपको दे। एंड अगेन, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से। मिलना होगा आप कल। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए हमारी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेसअप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405409156 आई रिपीट 0405409156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.brisbane.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वेटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

से जो बरसो कर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierticket.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो, बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों। श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। 2032 ओलंपिक सीईओ का इस्तीफा। जी हां, ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक आयोजन समिति की सीईओ सिंडी हुक ने घोषणा की है कि वो अपने 4 साल के कार्यकाल के खत्म होने पर पद से हट जाएंगी। कमेटी अब नए सीईओ की तलाश शुरू कर रही है। वहीं 2032 ओलंपिक बजट में बड़ा बदलाव। ब्रिस्बेन ओलंपिक के प्रेसिडेंट एंड्रयू लिवेरिस ने माना है कि शुरुआती $4.9 अरब का बजट जमीनी सच्चाई से बहुत अलग था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के साथ मिलकर अब नया और प्रैक्टिकल बजट तैयार किया जाएगा। वहीं ब्रिस्बेन हीट WBBL ने नया साइनिंग। ऑस्ट्रेलियाई महिला बिग बैश लीग WBBL के लिए ब्रिस्बेन आधारित फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका की स्टार ऑलराउंडर क्यो ट्रायन के साथ बड़ा करार किया है। वहीं ब्रिस्बेन में लोकल ट्रांसपोर्ट सुधार प्रोजेक्ट। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने आज अपने पब्लिक बस और फेरी नेटवर्क के लिए नई स्मार्ट टिकटिंग प्रणाली लागू करने का ऐलान किया है, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। वहीं साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में मौसम की चेतावनी। ब्रिस्बेन और आसपास के तटीय इलाकों में मौसम विभाग ने आज दोपहर बाद तेज हवाओं और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ब्रिस्बेन रिवर फ्रंट रेनोवेशन की शुरुआत। ब्रिस्बेन नदी के किनारे बने मुख्य वॉकवे और पार्कों को नया रूप देने के लिए आज से मरम्मत और सौंदर्यकरण का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन बंद। जी हां, दिल्ली पुलिस ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब दिल्ली के मशहूर जंतर मंतर को आधिकारिक विरोध प्रदर्शन वाली जगहों की लिस्ट से हटा दिया गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के लिए 3 अलग नए विकल्प दिए हैं। वहीं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग के फैसले लेने के तरीके और नई व्यवस्थाओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाया जाए। वहीं दिवाली पटाखों और पर सुप्रीम कोर्ट का रुख। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की पाबंदी पर बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं और सेहत, सांस की बीमारियों दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ स्मृति मंधाना बनी नई भारतीय कप्तान। भारतीय महिला क्रिकेट में एक नया दौर शुरू हो गया है। हरमनप्रीत कौर के कप्तानी छोड़ने के बाद स्मृति मंधाना को भारतीय टीम की नई कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही यूनिसेफ इंडिया ने उन्हें अपना नया सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर भी चुना है। इसी के साथ अहमदाबाद में ट्रेडिशनल खेल केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के अहमदाबाद में ब्रिक्स ट्रेडिशनल और इंडिजिनस स्पोर्ट्स गेम्स 2026 की शुरुआत की। इस आयोजन का मकसद पारंपरिक खेलों को दोबारा पहचान मिलाना है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2026, साल 2026 का इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज घोषित कर दिया गया है। अमेरिका के दो मशहूर अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मॉडल तैयार करने के लिए यह सम्मान मिला है। इसी के साथ दुनिया भर में मोबाइल फोन महंगे और कम। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। मेमोरी चिप्स की भारी कमी के कारण दुनिया भर में स्मार्टफोन की सप्लाई 20% की बड़ी गिरावट दर्ज कर रही है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम दिवस आज यानी 13 अक्टूबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है आपदाओं से सुरक्षा घर से ही शुरू होती है। इसी के साथ यूरोप और मलेशिया की नई चिप पार्टनरशिप। सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन ईयू ने मलेशिया के सेमीकंडक्टर नेटवर्क में भारी निवेश और मदद देने का ऐलान किया है। वहीं सऊदी में उड़ानों का पर पड़ा असर। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच रियाद एयरपोर्ट से जाने और आने वाली 60% शेड्यूल फ्लाइट्स को आज रद्द या रीशेड्यूल करना पड़ा है। वहीं एआई डाटा सेंटर्स के लिए नई तकनीक। टेक दुनिया में आज एआई डाटा सेंटर्स के लिए सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी की नई शुरुआत हुई है, जिससे बड़े बड़े कंप्यूटिंग सर्वर्स का पावर कट और हीटिंग इश्यू खत्म हो जाएगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले एशियाई खेलों के प्रदर्शन पर आज समीक्षा। भारत सरकार का खेल मंत्रालय आज दिल्ली में राष्ट्रीय खेल महासंघों के अधिकारियों के साथ एशियाई खेल 2026 में भारत के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक कर रहा है। वहीं भारत ने वेस्ट इंडीज को तीसरे T20 में हराया। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने 14 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। वहीं डेनमार्क ओपन में सिंधु लक्ष्य की चुनौती। बैडमिंटन फैंस के लिए बड़ा अपडेट, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज से शुरू हो रहे डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में अपने मुकाबले खेलने वाले हैं। इसी के साथ श्रीलंका के नए टेस्ट कप्तान कुसल मेंडिस। जी हां, आगामी पाकिस्तान दौरे के लिए श्रीलंका ने अपनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है और इस बार टेस्ट टीम की कप्तानी कुसल मेंडिस को सौंपी गई है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं, दीपावली उत्सव 2026, Saturday 24th October 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
6: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिसबेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिसबेन.

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जीतेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जीतेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
3: फायर एंड तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405409156 आई रिपीट 0405409156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो, बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार, ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
3: सर, ऑन स्टेज 5 मिनट।
4: ओके, तुम आ रही हो? मैं जा रहा हूं। लगता रूम में रह गई।

0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों, श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 04193344418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 04104546409। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers and आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101 एम ते जी आज के संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तो तुसी की गाना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल, तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रिसोनी 101 एम साडा फेसबुक पेज है, ते brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है। खैर तुहानूं पता ही है, बार फिर भी मैं हर रोज दस दिनी हुनी हां ताकि तुसी किते भुल ना जाओ जरा भी। ते जुड़दे रहो साडे नाल, रखो अपनी फरमाइशां, करो साडे नाल दिल दीआं गल्लां, ते मैं तां गाणे तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी ना। जरूर जरूर जरूर सुणाउंगी। ते चलो फिर तुसी इन्हां गीतां नूं इंजॉय करो, मैं हुणे वापस आई।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे तेरी रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने वन सर वन एम ते जी आज के संदेश अलग दिन से बने हुए हो। होप तुसी इन गीतों को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं तो इसे तरीके दे नाल सोने सोने गीत मैं अगे भी थानू सुनाती रहूंगी नाले करती रहूंगी गल्लां। तां हुण गल्लां करिए ना जे आपां तां बॉलीवुड दे विच बहुत कुछ खास हुंदा हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड तां मैनूं इंटरस्ट बॉलीवुड दे विच है क्योंकि बॉलीवुड दी फिल्मां इन्नियां सोहणियां आ रहीयां हैगियां ना तां सोचा के तुहानूं वी दस्सां। देखो पिछे चलदे हैगे आ 70s 80s 90s धूल नाल कुड़ियां अपनी मांग भर लैंदियां सी। राजेश खन्ना तो बाद धर्मिंदर अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा ऋषि कपूर अते मिथुन चक्रवर्ती नूं भी दर्शकां ने खूब प्यार दिता। पूरे तीन दहाकियां तक इन्हां सितारियां दा बॉलीवुड इंडस्ट्री विच जलवा रहा। इस विचों सिर्फ दो स्टार्स दे बेटे बेटियां नूं ना इंडस्ट्री विच सफलता मिली है ते ओ सुपरस्टार ते उन्हां दे बेटे कौन ने उन्हां बारे दसूंगी तुहानूं पर पहला सुणाउनी है गीत।

तो पहला गल करते हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। तो देखो राजेश खन्ना का असल नाम ना जतिन खन्ना सीगा। राजेश खन्ना दे चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत नाल उन्होंने बॉलीवुड के विच डेब्यू किया सीगा। उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म आराधना फिल्म नाल रातों रात स्टारडम हासिल किया सीगा। तो राजेश खन्ना ने ना 1969 यानी कि 1969 तो लैके 1974 यानी कि 1974 तक 17 तो ज्यादा हिट फिल्मा दित्तियां सी। उन्होंने कटी पतंग, इतफाक, डोली बंधन, दो रास्ते, खामोशी, द ट्रेन, सच्चा झूठा, सफर, आनंद, आन मिलो सजना, अंदाज, मर्यादा, हाथी मेरे साथ ही, महबूब, छोटी भाभी वर्गियां हिट फिल्मा दित्तियां सी। 1974 तो उन्हां दा डाउनफॉल शुरू होया सी। फिर उन्होंने 1980 के दहाके विच वापसी की। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया नाल 1973 विच ब्याह किया सी। ते ब्याह तो बाद उन्होंने दो बेटियां ट्विंकल खन्ना ते रिंकी खन्ना होईयां सी। इन्हां बारे दसना है थानू, इन्हीं ये दसना जरूरी हुंदा ना, छोटियां छोटियां चीजां दसनियां बहुत ज्यादा जरूरी हुंदियां। बेटियां बारे दस दी हां पर पी लैंगी सुन लो।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 होने जा रहा है from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओनली गॉड कैन जज मी दैट राइट ओनली गॉड बेबी नोबडी एल्स
2: मेरे राह दी मकामा नाल पक ठक सहज सुभा।

जी जी आनु जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी वंसन वन एम ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो राजेश खन्ना दिया दोनों ही बेटियां ने बॉलीवुड विच किस्मत अजमाई, दोनों नू निराशा भी हथ लगी। राजेश खन्ना की वड्डी बेटी ट्विंकल खन्ना ने 1995 विच बॉबी देओल दे नाल बरसात फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया। डेब्यू फिल्म तो सुपरहिट रही पर इस तो बाद आने वाली मूवी फ्लॉप रही। ट्विंकल खन्ना ने जान दिल तेरा दीवाना इतिहास इंटरनेशनल खिलाड़ी जुल्मी बादशाह मीला वर्गिया फिल्मों में काम किया। ट्विंकल की भैन रिंकी खन्ना का करियर भी बॉलीवुड में कुछ खास नहीं चल पाया। रिंकी खन्ना ने प्यार में कभी कभी मुझे कुछ कहना है वर्गिया फिल्मों में काम किया पर तकदीर नहीं बदली। ते फिर तकदीर जदो नहीं बदली ना ता फिर जल्दी ही उन्होंने बॉलीवुड तो विदा भी ले लिया ते ब्याह करवा लिया। ट्विंकल खन्ना ने जिते अक्षय कुमार दे नाल ब्याह कीता ता उधर रिंकी खन्ना ने बिजनेसमैन समीर सरन दे नाल ब्याह करवाया।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101 एम ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो हुण गल करदे हैं कि 70 ते 80 यानी कि 70s ते 80s दहाके दे सब तो वड्डे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन दी महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक ने 2000 रिफ्यूजी फिल्म नाल करीना कपूर के नाल बॉलीवुड विच डेब्यू किया। जेबी दत्ता के निर्देशन विच बनी यह फिल्म कुछ खास नहीं कमाल कर सकी। अभिषेक बच्चन के करियर की शुरुआत दी 14 फिल्मा फ्लॉप या डिजास्टर रही। उधर 2004 धूम फिल्म तो उन्होंने सफलता का स्वाद चक्या है। फिर बंटी और बबली, धूम 2, गुरु हिट रही, धूम 3, हैप्पी न्यू ईयर, हाउसफुल 3 वर्गे मल्टी स्टारर फिल्मा विच उन्हां दा काम सराया गया, पर वह सोलो हिट देण विच फेल रहे। अभिषेक बच्चन भी अपने पिता वर्गे स्टार नहीं दोहरा पाए, पर अज भी स्ट्रगल कर रहे ने।
1: क्योंकि मेरी जिंदगी में चीजें सीखी

0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Rayali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: हनी, ये तुम कहां ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
4: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
3: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਬਸਵਾਨੀ 101.1 FM ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। उस तो बाद 70s-80s दे दहाके दे एक होर सुपरस्टार दी गल कर लैने आ, ओ है कि ने जितेंद्र। जितेंद्र दे बेटे ने तुषार कपूर, उन्हां दी गल करदे आ। तुषार कपूर ने बॉलीवुड विच मुझे कुछ कहना है दे नाल डेब्यू कीता सी। पहली फिल्म तां सफल रही पर फिर किस्मत ने साथ नहीं दिता। तुषार कपूर दी एक्टिंग भी दर्शकां नूं लुभा नहीं सकी। क्या दिल ने कहा, जीना सिर्फ मेरे लिए कुछ तो है ते ये दिल, गायब, खाकी, क्या कूल है हम, गोलमाल, लव स्टोरी, क्या लव स्टोरी है, शूट आउट एट लोखंडवाला, बहुत सारिया फिल्मा कीतियां पर कोई फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। मल्टी स्टारर दे विच उन्हां नूं सराया गया पर उही गल ना, अपने दम ते ओ वी सोलो हिट नहीं दे पाए ते जल्द ही ओ साइड हीरो बन के रह गए।

0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
1: फायर एंड तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: कुछ मिले सुहाना साहब तो रब सीगा जानू कले कले खाब तो रब सीगा जानू कले कले खाब तो नी मैनू सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो।
1: यस वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101 एम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होए। देखो जितेंद्र दी एक टीवी हैगी है, बेटा नहीं कमाल कर सकिया, बेटी ने कीता हैगा एकता कपूर। जी हाँ, एकता कपूर टीवी दी दुनिया दी क्वीन कहलाई जाती है। उन्होंने तुषार कपूर तो ज्यादा उन्होंने सफलता मिली है। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म कंपनी के बैनर तले एक तो वध के एक सीरियल प्रोड्यूस किए। एकता कपूर ने हम पांच, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, कुसुम, कहीं तो होगा, कसम से पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं, ते जोधा अकबर वर्गे कई सीरियल्स बनाए। तुषार कपूर ते एकता कपूर ने व्याह नहीं किया। तुषार कपूर जो 2016 सैरोगेट से आईवीएफ के जरिए एक बेटे के पिता बने, सिंगल फादर बने। तुषार ने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा है। तुषार कपूर की भैन एकता कपूर ने भी 27 जनवरी 2019 सैरोगेसी के जरिए बेटे रवि कपूर को जन्म दिया। सिंगल मदर बनी उन्होंने अपने पिता जितेंद्र के असली नाम से बेटे का नाम रखा।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

सारा कुछ मिले सुहाना सब तो। धर्मिंदर ही कलौते अजिहे स्टार है जिन्हां दे वड्डे बेटे सनी देओल का करियर बेहद सफल रहा। सनी देओल ने 1983 दी बेथा फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सी। फिर अर्जुन, घायल, दामिनी, घातक, बॉर्डर, गदर एक प्रेम कथा, गदर टू, बॉर्डर टू वर्गियां ब्लॉकबस्टर फिल्मां दित्तियां। सनी देओल ने अपने दम ते सोलो हिट दित्तियां ने। उधर उन्होंने भरा बॉबी देओल ने करियर की शुरुआत 1995 विच बरसात फिल्म नाल कीती सी। मूवी सुपरहिट रही, फिर सोल्जर, गुप्त वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां, पर इस तों बाद उन्होंने नसीब उन्हां तों गुस्से हो गया। बॉबी ने फ्लॉप फिल्मां दी लाइन चुन ली। पूरे 15 साल फ्लॉप करियर का दौर चुनिया। 2019 विच उन्हां दी किस्मत पलटी ते ओ नेगेटिव रोल्स करन लग गए। एनिमल मूवी विच उन्हां दा छोटा जिहा रोल दर्शकां दे दिल नूं छू गया।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
2: और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: इन द हाउस हाउस
1: देखो बेड़ा हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर एक हो सुपरस्टार की गल करनी रह गई तो सोचा उन्होंने गल भी जरूर कर ला ते उन्होंने गल कर लैनी है जी। तो सुपरस्टार ऋषि कपूर 1973 आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी दे नाल डेब्यू किया। उन्होंने अपने करियर दे विच बहुत शानदार फिल्मां दित्तियां सी। अपनी छवि चॉकलेटी रही हैगी उन्हां दी। ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने अपने पिता की विरासत नूं अगे संभाल लिया है। वो अपने पिता नाल तो दो कदम अगे निकल गए। रणबीर कपूर ने 2007 विच सावरिया मूवी दे नाल डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही पर उन्होंने संघर्ष किया, फिर बहुत सारिया फिल्मां कीतियां ते ब्लॉकबस्टर रहियां ते रणबीर कपूर दे टैलेंट ते कामयाबी ते पूरी इंडस्ट्री ने मान ली हैगी, असीं भी मान गए हैगे। तां इह कुछ सितारे हैगे ने उन्होंने बच्चे ने जिन्हां ने की किया थानू दस्या है। बाकी तुसी की किया सारा दिन तुसी जरूर दस्या करो, साडे नाल जुड़ते रह करो। रेडियो बरसोनी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, ते bersoni@bersoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा भी अपनाउणा अपना लो, साडा गल्ल पता जरूर करते रह करो। बाकी अपना ख्याल रख्या करो ते मैं तां इही कहना कि कल करांगे मुलाकात। रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके.
0: That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन

0: भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तों भी अग्गे दे समें वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर एथलीट विलेज शामिल हैं जो कि अगे चल के रिहायश लिए वरती जाएगी। असी तुहाडे लिए होर की मुहैया करवा रहे हैं, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज are $20 per head, $50 per family, जिसमें couples के साथ 2 kids under 16 years are included, और kids under 12, yes, होंगे free. ज्यादा जानकारी के लिए contact Nilima on 0405-409-156. I repeat, 0405-409-156. या आप ब्रिस्वानी की official website www.briswani.com पर event section में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026, Saturday 24th October 2026. Event proudly supported by the City of Moreton Bay.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense which 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws which we Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों। श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर 550 वेम्बले रोड बेरनबाग क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेस आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

हेलो फ्रेंड्स, क्वींसलैंड फिजी फुटबॉल एसोसिएशन प्रेस्टिजियस निल टेक क्यूआईडीसी 2026 होने जा रहा है फ्रॉम वेंसडे 21 अक्टूबर टू संडे 25 अक्टूबर एट द प्रेस्टिजियस ओलंपिक फुटबॉल क्लब। पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा। साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता।
1: जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट

हेलो फ्रेंड्स, क्वींसलैंड फिजी फुटबॉल एसोसिएशन प्रेस्टिजियस निल टेक क्यूआईडीसी 2026 होने जा रहा है फ्रॉम वेंसडे 21 अक्टूबर टू संडे 25 अक्टूबर एट द प्रेस्टिजियस ओलंपिक फुटबॉल क्लब। पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Now is the time for all to see. Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NILTEC QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा. साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा. खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू. अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं. तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777.

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 1, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट वीले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: पतली कमर मटका के
4: हाय हाय हाय हाय हाय हाय
3: नागिन से बल खा के
4: हाय हाय हाय हाय।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेसअप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेस आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस मेडांटा सी के बिरला आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनल।

Maxim, experienced team और trusted alternative to unorganized, unreliable home helpers. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360. ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

गुमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा
1: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों। श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24th October 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर 550 वेम्बले रोड बेरनबाग क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स unite us all.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 kids अंडर 16 ईयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

हेलो फ्रेंड्स, क्वींसलैंड फिजी फुटबॉल एसोसिएशन प्रेस्टिजियस निल टेक क्यूआईडीसी 2026 होने जा रहा है फ्रॉम वेंसडे 21 अक्टूबर टू संडे 25 अक्टूबर एट द प्रेस्टिजियस ओलंपिक फुटबॉल क्लब। पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Rayali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो उपलब्ध दित्ती है।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा। साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: मम्मी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. Pehli baar Brisbane Nasinu honge QFFA family ka hissa. Saath hi dekhne aa rahe hain Suva, Lambasa, Nandi, Lotoka, Ba, Tavua, Rewa, Nandroga and Ra. Khane mein hogi the famous butter chicken duck curry, pulao aur mouth watering Fiji style barbecue. Are are, hum ice blocks ko kaise bhool sakte hain? To aa jao maidan mein aur apni Fiji community ke saath games aur khane ka lutf uthao. Zyada jankari ke liye call kare Chairperson Lawrence on 0407-764-272 ya Secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir President Jitendra Prasad on 0402-422-777.

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। हमारे इस वेदवाणी कार्यक्रम को सुनने वाले श्रोतागणों की ओर से ये अनुरोध आया हुआ है कि हम पूजा और प्रार्थना के विषय में कुछ चर्चा करें। इस विषय के संबंधित कई प्रश्न उठते हैं। हम पूजा क्यों करते हैं? विग्रह या मूर्ति के सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं? फूल, धूप, दीप, फल और भोजन क्यों अर्पित करते हैं? विशेषकर कठिनाई के समय हम कृष्ण से प्रार्थना क्यों करते हैं? क्या पूजा केवल धार्मिक परंपरा है? क्या प्रार्थना केवल भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने का साधन है, या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य है? ये पूजा या प्रार्थना का अभ्यास केवल रीति रिवाज नहीं है, ये कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनः जागृत करने के अवसर है। हम इस संसार के स्वतंत्र भोक्ता नहीं है, एंजॉयर नहीं है। हम कृष्ण के शाश्वत अंश है और उनके साथ अपने प्रेममय संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए है। एक ऐसे बच्चे की कल्पना कीजिए जो अपने पिता से बिछुड़ गया हो। उसके पास खिलौने, धन और अनेक सुविधाएं हो सकती है, फिर भी वो पिता के स्नेह के लिए तरसता है। इसी प्रकार जीवक के पास भौतिक सुविधाएं हो सकती है, परंतु हृदय की सबसे गहरी आध्यात्मिक आवश्यकता परम भगवान के साथ संबंध से ही पूरी होती है। पूजा कृष्ण की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करती है और प्रार्थना उनके आश्रय के लिए हमारे हृदय की पुकार को स्वर देती है। हम कृष्ण की पूजा करते हैं क्योंकि वे हमारे प्रेम और सेवा के योग्य है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम उनके प्रति अपनी निर्भरता स्वीकार करते हैं। तो चलिए अब हम पूजा और प्रार्थना को आगे समझते हैं। पूजा क्या है? पूजा परम भगवान की आराधना और सम्मान करने का कार्य है। वैष्णव परंपरा में पूजा केवल बाहरी समारोह नहीं है, बल्कि कृष्ण को अर्पित की गई भक्ति सेवा है। अधिकृत पूजा विधि के अनुसार हम फूल, धूप, दीप, जल, भोजन या अन्य उपयुक्त वस्तुएं अर्पण कर सकते हैं। इनका मूल तत्व है भक्ति। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। अर्थात यदि कोई भक्त मुझे प्रेम और भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उस भक्ति पूर्वक अर्पित भेंट को स्वीकार करता हूं। यहां भक्त्या या भक्ति के साथ शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है। कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि वे किसी भेंट को केवल इसलिए स्वीकार करते हैं कि वो महंगी है, भव्य है या विस्तृत अर्थात एलेबरेट है। वे भक्ति के साथ अर्पित भेंट की बात करते हैं। कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम है। उन्हें हमारी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संपूर्ण सृष्टि पहले से ही उनकी है। तो चलिए हम एक सरल भेंट के उदाहरण को देखते हैं। दो भक्तों की कल्पना कीजिए। पहला भक्त बहुत ही भव्य भोग तैयार करता है, परंतु उसका ध्यान कहीं और है। वो गर्वित है और दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। और दूसरी ओर देखें तो दूसरे भक्त के पास केवल थोड़ा सा फल और जल है, जिसे वो सावधानी, ईमानदारी और कृतज्ञता से अर्पित करता है। इससे ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि विस्तृत पूजा गलत है। सुंदर और भव्य पूजा भक्ति की अद्भुत अभिव्यक्ति हो सकती है, परंतु बाहरी वैभव सेवा के आंतरिक भाव का स्थान नहीं ले सकता। अपनी क्षमता और पूजा के प्रामाणिक विधि के अनुसार जो अर्पित कर सकते हैं करें,
परंतु निष्कपट हृदय से करे और भगवान को जो अनुकूल हो वो अर्पण करे। तो चलिए अब देखते हैं प्रार्थना क्या है। प्रार्थना का अर्थ है विनती, निवेदन या हृदय से की गई हुई पुकार। प्रार्थना के अंतर्गत कृष्ण की महिमा गाना, प्रणाम करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, क्षमा मांगना, आध्यात्मिक मार्गदर्शन मांगना और उनकी इच्छा के प्रति समर्पण करना, यह सब सम्मिलित है। भगवान के सामने अपनी इच्छाओं की सूची रख देना, केवल इसे प्रार्थना नहीं कहते। प्रार्थनाओं को कहने का तरीका इस प्रकार है, हे कृष्ण, आप मेरे प्रभु हैं, कृपया मुझे आपका स्मरण करने में सहायता दे, कृपया मेरी गलतियों को क्षमा करे, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाए, कृपया मुझे आपको भूलने से बचाए और कृपया आप मुझे भौतिक आसक्ति अर्थात मटेरियल अटैचमेंट से बचाए। एक भक्त सुरक्षा और कठिनाइयों से राहत के लिए प्रार्थना कर सकता है, परंतु जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक समझ गहरी होती है, वो अस्थाई लाभों के बजाय स्वयं कृष्ण को पाने की इच्छा करने लगता है। पूजा सेवा की भेंट है, प्रार्थना उस हृदय की पुकार है जो सेवा करना चाहता है। एक और प्रश्न जो लोग कभी काल पूछते हैं वो यह है कि यदि भगवान सर्वव्यापी है, सब स्थानों में है, तो उसे अपने मंदिर या घरों में मूर्ति के रूप में क्यों पूजा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर का आरंभ भगवान श्री कृष्ण अपने ही वचनों से करते हैं। भगवद गीता 9वां अध्याय 11वां श्लोक, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य जैसा रूप धारण करते देखकर मेरा अनादर करते हैं। वे नहीं जानते कि मैं समस्त जीवों का परमेश्वर हूं। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनकी पहचान भौतिक शरीर तक सीमित हो। भगवद गीता के अनुसार उनका स्वरूप दिव्य है। वास्तव में विग्रह आराधना या मूर्ति पूजन भगवान की कृपा का सिद्धांत है। एक प्रामाणिक रूप और पूजा की विधि के माध्यम से भगवान अपने आप को हमारी सेवा के लिए उपलब्ध बनाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भौतिक पदार्थों से भगवान को बना सकते हैं या उन्हें अपनी इच्छा से कहीं भी प्रकट होने के लिए बाध्य कर सकते हैं। भगवान के द्वारा ही दिया हुआ प्रामाणिक मार्ग से और वैष्णव आचार्यों के मार्गदर्शन से हम भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। विग्रह अर्थात मूर्ति आराधना हमारी इंद्रियों को भक्ति सेवा में लगाने का व्यवहारिक साधन है। हम विग्रह के दर्शन करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, वेदी सजाते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान के नाम सुनते हैं। हमारी इंद्रियां जो सामान्यतः सांसारिक विषयों में लगी रहती है, इस माध्यम से वे कृष्ण की सेवा में लगने लगती है। श्रीमद् भागवतम यानी भागवत महापुराण के 7वें स्कंद 5वें अध्याय 23वें श्लोक में प्रहलाद भक्ति सेवा के 9 प्रमुख विधियों का वर्णन करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। अर्थात भगवान विष्णु के विषय में सुनना, उनकी महिमा का कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, प्रार्थना और प्रणाम करना, उनका सेवक बनना, उनसे मित्रता करना और अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित करना, इनमें से 2 विधियां यहां विशेष रूप से संबंधित है। एक है अर्चनम अर्थात भगवान की विधि पूर्वक पूजा और दूसरा है वंदनम भगवान को प्रार्थना और प्रणाम अर्पित करना। दोनों भक्ति के ही रूप है।
वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटर्स नहीं है और इन दोनों में से किसी को भी यांत्रिक क्रिया अर्थात मैकेनिकल एक्टिविटी तक सीमित नहीं करना चाहिए। कोई भक्त सुंदर ढंग से आरती कर सकता है परंतु बाद में परिवार के सदस्यों से कठोर व्यवहार कर सकता है। कोई प्रतिदिन प्रार्थना कर सकता है परंतु कुटिलता की आदत सुधारने के लिए तैयार ना हो। वास्तव में भक्ति अभ्यास हमारी चेतना और आचरण को बदलने के लिए है। बाहरी क्रियाओं को चाहिए कि वो कृष्ण के प्रति आंतरिक निष्ठा को सहायता प्रदान करे। पूजा के व्यवहारिक रूपों में से सबसे सरल है भोज पदार्थ अर्पण करना। भगवद गीता के 9:26 में कृष्ण कहते हैं कि वे एक पत्र, पुष्प, फल और जल स्वीकारते हैं यदि उसे भक्ति भाव से अर्पण किया जाए। और फिर भगवद गीता 9:27 में वे इसी सिद्धांत को हमारे सभी कार्यों तक विस्तृत करते हैं। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ में अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो वो सब मुझे अर्पित करो। तो पूजा केवल मंदिर की वेदी तक सीमित नहीं है। हम कृष्ण के लिए भोजन तैयार करते हैं, भक्तिपूर्ण विधि से अर्पित करते हैं और प्रसाद को सम्मान पूर्वक ग्रहण करते हैं। हम अपना काम, प्रतिभा, समय और उत्तरदायित्व ये सब भी कृष्ण की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। माता पिता परिवार को भोजन परोसने से पहले उसे कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। विद्यार्थी सत्यनिष्ठा से पढ़ाई करके उसके फल भगवान को समर्पित कर सकता है। एक कर्मचारी स्वार्थपूर्ण लाभ को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बनाए बिना अपने उत्तरदायित्वों को निष्ठा से निभा सकता है। वेदी यानी जो हमारे घर पर भगवान का स्थान होता है वो हमारे दिन का केंद्र बन जाता है और हमारे दैनिक कार्य उसी केंद्र से जुड़ जाते हैं। तो अब हम पूजा से प्रार्थना की ओर चले। वास्तविक प्रार्थना किस बात से बनती है? क्या ये प्रार्थना की लंबाई, संस्कृत की सुंदरता, आवाज की ऊंचाई या उसे दोहराने की संख्या पर निर्भर करती है? इन बातों का अपना स्थान हो सकता है परंतु मूल प्रश्न है हम कृष्ण से क्या मांग रहे हैं और हमारे हृदय का भाव क्या है। हमें ये जानना आवश्यक है कि प्रार्थना समर्पण से आरंभ होती है। भगवद गीता 18:66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पाप में प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। कृष्ण का निर्देश समर्पण का निमंत्रण है। वास्तविक समर्पण का अर्थ कृष्ण को अपना रक्षक स्वीकार करना और उनके निर्देशों का पालन करना है। समर्पित भक्त ये आवश्यक नहीं समझता कि जीवन में सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएगी। वो कृष्ण में विश्वास और भक्ति सेवा की निष्ठा के साथ कठिनाइयों का सामना करना सीखता है। एक बच्चा किसी अनजान जगह पर डर कर अपने माता पिता का हाथ पकड़ता है। परिस्थिति तुरंत न भी बदले फिर भी संबंध के कारण उसे सुरक्षा का अनुभव होता है। इसी प्रकार प्रार्थना कृष्ण को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं है, ये प्रार्थना उन पर विश्वास व्यक्त करना है। महान वैष्णव आचार्य सिखाते हैं कि सर्वोच्च प्रार्थना केवल धन, सफलता, अच्छा स्वास्थ्य या मुक्ति के लिए नहीं है। सर्वोच्च प्रार्थना निष्काम भक्ति सेवा के लिए है। इसका सुंदर उदाहरण महारानी कुंती की प्रार्थना है। भागवत महापुराण 1:8:25 में कुंती इस प्रकार प्रार्थना करती है। विपदाः संतु हुताः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। अर्थात महारानी कुंती असाधारण इच्छा व्यक्त करती है कि यदि कठिनाइयों से भगवान का सानिध्य बना रहे और उन्हें भगवान को भूलने से बचाए तो कठिनाइयां बार बार आती रहे। इस प्रार्थना को हमें सावधानी से समझना है। कुंती यहां हमें ये शिक्षा नहीं दे रही है कि हम कठिनाइयां प्राप्त करने के लिए कठिनाइयां ढूंढे, और न ही हमें ये सिखा रही है कि हम अपने स्वास्थ्य या उत्तरदायित्व की परवाह न करें। कुंती यहां एक अनोखी आध्यात्मिक प्राथमिकता को दर्शा रही है कि कठिनाइयों में भी कृष्ण का स्मरण उन भौतिक सुख सुविधा से बहुमूल्य है जिन सुख सुविधाओं के कारण हम उन्हें भूल सकते हैं। संकट के समय कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर हो सकता है। प्रार्थना, जप, शास्त्र पाठ और भक्तों का संग करता है। संकट समाप्त होने पर वो फिर भगवान को भूल सकता है। कुंती की प्रार्थना पूछती है कि क्या मैं कृष्ण को केवल परेशानी के समय ही नहीं बल्कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी याद रख सकती हूं। यही हमारे दैनिक प्रार्थना के लिए गहरी शिक्षा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में एक और आवश्यक प्रार्थना मिलती है, और ये प्रार्थना भौतिक इच्छाओं से मुक्ति के लिए होती है। अपने शिक्षाष्टक 4 में उन्होंने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतुकी त्वयि। अर्थात हे जगदीश्वर, मुझे धन, अनुयायी या सांसारिक भोग नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर तक आपके प्रति मेरी निष्काम भक्ति बनी रहे। कृष्ण भावनामृत के साधक के लिए ये एक आदर्श प्रार्थना है। हम परिवार के कल्याण, उत्तरदायित्व निभाने की शक्ति और वास्तविक कष्ट से राहत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु हमें ऐसे हृदय के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जो परिस्थितियां कैसी भी हो कृष्ण के प्रति हमारा समर्पण बना रहे। उदाहरण के रूप में, कृष्णा कृपया मुझे आप पद की उन्नति दे, ऐसी प्रार्थना करने के बजाय हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे कृष्णा, कृपया हमारे उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमें मदद करें, हमें सदा आपका स्मरण रहे, और आप जो भी कुछ अवसर अपनी सेवा के लिए मुझे दे उस अवसर का मैं सही उपयोग करूं। परंतु इससे भी गहरा अनुरोध कृष्ण का बेहतर सेवक बनने में है। तो हमारे वैदिक शास्त्र न ही केवल हमारे पूजा और प्रार्थना का अर्थ समझाते हैं, परंतु वे भक्तों का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनका आचरण हमें यह सिखलाता है कि हम कैसे भगवान के निकट जा सकते हैं। तो चलिए हम सर्वप्रथम सुदामा विप्र का उदाहरण देखें, जिन्होंने भगवान को एक बहुत ही तुच्छ भेंट दी थी। इनके चरित्र से हम ये सीख सकते हैं कि एक तुच्छ भेंट भी किस भावना से दी जाती है। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण और कृष्ण के बचपन के मित्र थे। द्वारका में कृष्ण से मिलने जाते समय उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान से सहायता मांगने के लिए प्रोत्साहित किया। सुदामा एक छोटी सी पोटली में चिवड़ा लेकर गए। कृष्ण ने अत्यंत स्नेह से उनका स्वागत किया, उन्हें प्रिय मित्र की तरह अपनाया और उनकी भेंट स्वीकार की। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 स्कंद अध्याय 80-81 में वर्णित है। कृष्ण किसी भेंट को उनकी कीमत से नहीं आंकते। सुदामा की भेंट में स्नेह और विनम्रता थी। इसका अर्थ ये नहीं कि विग्रह पूजा या मूर्ति पूजा के मानकों की उपेक्षा करे या लापरवाही से वस्तुएं अर्पण करे। हमारी भेंटों में गर्व के बजाय निष्कपटता होनी चाहिए। कृष्ण को कुछ अर्पित करने से पहले पूछे, क्या मैं ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर रहा हूं या केवल एक नियमित क्रिया पूरी कर रहा हूं।
दूसरा उदाहरण है गजेंद्र का और ये उदाहरण है असहाय अवस्था में प्रार्थना। गजेंद्र की कथा श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद अध्याय 2-4 में प्रार्थना का शक्तिशाली उदाहरण है। हाथियों के राजा गजेंद्र को स्नान करते समय मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अत्यधिक शारीरिक बल के बावजूद वे स्वयं को छुड़ा नहीं सके और अंततः उनकी शक्ति समाप्त हो गई। तब उन्हें परम भगवान का स्मरण हुआ और उन्होंने समर्पण भाव से प्रार्थनाएं की। श्रीमद् भागवतम 8:3-2 में ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि, अर्थात गजेंद्र समस्त अस्तित्व के मूल स्रोत भगवान के परम पुरुषोत्तम स्वरूप को आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। भगवान ने गजेंद्र की प्रार्थना का उत्तर दिया और उन्हें बचाया। इससे तीन शिक्षाएं मिलती है। पहली, कृष्ण के साथ संबंध विकसित करने के पहली कृष्ण के साथ संबंध विकसित करने के लिए संकट आने तक प्रतीक्षा न करें। गजेंद्र को पहले से सीखी हुई प्रार्थनाएं याद करें। दूसरी, प्रार्थना परम भगवान पर अपनी निर्भरता स्वीकार करना है, केवल भौतिक लाभ पाने का प्रयास नहीं। तीसरी, बल धन शिक्षा या प्रभाव पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देते, वे कृष्ण के साथ संबंध का स्थान नहीं ले सकते। और इस प्रार्थना का व्यवहारिक प्रयोग कठिन निर्णय के सामने हो तो प्रार्थना से शुरुआत करें। गुरु साधु और शास्त्र का परामर्श ले, फिर उत्तरदायित्व से कार्य करें। प्रार्थना और व्यवहारिक प्रयास एक दूसरे के सहायक होने चाहिए। अब तीसरा उदाहरण है भक्त प्रहलाद का और यह है द्वेष रहित प्रार्थना। अपने पिता हिरण्यकशिपु के कठोर विरोध के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहे। जब भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया, तब प्रहलाद ने द्वेष या प्रतिशोध से प्रतिक्रिया नहीं की। वे विनम्रता पूर्वक भगवान के पास गए और प्रार्थनाएं अर्पण की। उनका उदाहरण दिखलाता है कि भक्ति का अर्थ केवल भगवान से कि भक्ति का अर्थ केवल भगवान से शत्रुओं को हराने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ ऐसा हृदय विकसित करना है जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। प्रहलाद की शिक्षाएं श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है। 7:5-23 में वे भक्ति की 9 विधियां बताते हैं और अध्याय 9 में भगवान नृसिंहदेव की स्तुति करते हैं। अब हमारे सामने तो प्रहलाद जैसी असाधारण परिस्थितियां तो नहीं है, फिर भी प्रतिदिन आलोचना, पारिवारिक मतभेद, कार्यस्थल के विवाद और निराशाएं आती है। इसी कारण एक उपयोगी प्रार्थना यह है कि हे कृष्ण, कृपया मुझे आपकी शिक्षाओं के अनुसार आचरण करने में सहायता दे, मुझे ऐसा बल दे कि मैं कठोर बने बिना सत्य बोल सकूं, अहंकारी बने बिना दृढ़ रह सकूं और अपनी उत्तरदायित्व छोड़े बिना क्षमा कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना हमारे संबंधों को बदल सकती है। अब चौथा उदाहरण है गोपियों का, जिन्होंने प्रेम से प्रेरित आराधना दर्शाई। वृंदावन वासी विशेषकर गोपियां श्रीमद् भागवतम में कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति की उच्च अवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उनकी भक्ति भौतिक पुरस्कार या प्रतिष्ठा की इच्छा से प्रेरित नहीं है, उनके हृदय कृष्ण को प्रसन्न करने में लीन है। इन उच्च लीलाओं को सम्मान पूर्वक समझना चाहिए और उन्नत भक्तों के अंतरंग भावों की नकल नहीं करनी चाहिए। वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति उचित मार्गदर्शन में अधिकृत भक्ति विधि का अनुसरण करने से होती है। हम जहां हैं वहीं से आरंभ करें, कृष्ण के विषय में सुने, उनके नामों का कीर्तन करें, विग्रह मूर्ति की पूजा करें, प्रसाद ग्रहण करें,
भक्तों की सेवा करें और भक्तिमय जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करें। निष्कपट साधना और कृष्ण की कृपा से प्रेम विकसित होता है। अब चलिए हम देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में पूजा और प्रार्थना का प्रयोग किस प्रकार करें। हम इन शिक्षाओं को अपने घर, कार्यस्थल और निजी दिनचर्या में कैसे ला सकते हैं? उत्तर ये नहीं कि पूजा को अधिक जटिल बना दिया जाए, बल्कि भक्ति साधना को नियमित, एकाग्र और अर्थपूर्ण बनाया जाए। अब पहला प्रयोग है कि दिन की शुरुआत कृष्ण के साथ करें। प्रातःकालीन पूजा भगवान को प्रणाम करें, उपयुक्त हो तो वेदी साफ करें। अपनी साधना के अनुसार ताजा जल और फूल अर्पित करें और अपने मार्गदर्शन तथा परिस्थितियों के अनुरूप पूजा करें। जप और कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करें। जप को केवल निश्चित संख्या में माला पूरी करने की दौड़ ना बनाए। उद्देश्य पवित्र नामों को ध्यान से सुनना है, अध्ययन और मनन वो भी करना है। भगवद गीता यथारूप या श्रीमद भागवतम का कोई अंश पढ़े। उस दिन पर लागू की जा सकने वाली एक शिक्षा पर विचार करें। दिनचर्या की अवधि अलग अलग हो, दिनचर्या की अवधि अलग अलग हो सकती है। महत्वपूर्ण बात नियमितता, निष्कपटता और उचित मार्गदर्शन में प्रगति है। तो पूजा और प्रार्थना का दूसरा व्यवहारिक प्रयोग है, भोजन करने से पहले उसे अर्पित करें। भगवद गीता 9वें अध्याय 26वें और 27वें श्लोक में कृष्ण को भोजन अर्पित करने का दार्शनिक आधार देते हैं। अपने घरों में भक्त सामान्यता अर्पण के योग्य शाकाहारी भोजन तैयार करते हैं। परंपरा के अनुसार अर्पित न की जाने वाली सामग्री से बचते हैं और भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से पहले कृष्ण को अर्पित करते हैं। ऐसा करने से भोजन के प्रति हमारा संबंध बदल जाता है। ये मेरा है और मैं इसे अपने भोग के लिए खाऊंगा, ऐसा सोचने के बजाय हम ये भाव विकसित करते हैं कि यह कृष्ण की कृपा से मिला है, पहले इसे उन्हें अर्पित करूं। भोजन शरीर को पोषण देता है, परंतु उसे ग्रहण करना भक्ति स्मरण और कृतज्ञता से जोड़ दिया जाता है। पूजा और प्रार्थना का तीसरा उपयोग है कि हम काम को अर्पण बना दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरंतु उसे ग्रहण करना भक्ति स्मरण और कृतज्ञता से जोड़ दिया जाता है। पूजा और प्रार्थना का तीसरा उपयोग है कि हम काम को अर्पण बना दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता केवल

सकता है, व्यापारिक नैतिक ढंग से व्यापार कर सकता है। माता पिता बच्चों की देखभाल को पवित्र उत्तरदायित्व मान सकते हैं। याद रहे, केवल मन ही मन कृष्ण का स्मरण करते हुए कोई काम कर लेने से वो अपने आप शुद्ध भक्ति नहीं बन जाता। भक्तिपूर्ण कार्य विकसित करने के लिए अपने कर्मों को कृष्ण की प्रसन्नता से जोड़ना, उनकी शिक्षाओं का पालन करना और उचित मार्गदर्शन स्वीकार करना आवश्यक है। हमारे सामान्य कर्तव्य भी कृष्ण को समर्पित जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। अब चौथा प्रामाणिक प्रयोग है कि प्रतिदिन प्रार्थना करने की आदत विकसित करें। कृतज्ञता इस प्रकार प्रकट करें कि हे कृष्ण, इस जीवन आपकी शिक्षाओं और भक्ति सेवा में लगने के अवसर के लिए आपका धन्यवाद। फिर विनम्रता की प्रार्थना, कृपया मुझे अपनी गलतियां पहचानने और अहंकार, ईर्ष्या तथा स्वार्थ पर विजय पाने में सहायता दे। और फिर मार्गदर्शन, कृपया भगवद गीता की शिक्षाओं को समझने और उनका पालन करने में मेरी सहायता करे। और फिर सेवा, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं और केवल अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं बल्कि आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य करने में सहायता दे। ये सब व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के उदाहरण है, शास्त्र से लिए गए उदाहरण नहीं। ये भगवद गीता और वैष्णव परंपरा में सिखाए गए भावों को व्यक्त करते हैं। अब पूजा या प्रार्थना के समय मन भटकने लगे तो क्या करें? ये सामान्य चुनौती है। हम विग्रह या मूर्ति के सामने खड़े होकर काम के बारे में सोच सकते हैं, जब करते समय अगले दिन के कार्यों की योजना बना सकते हैं या प्रार्थना का अर्थ समझे बिना उसे दोहरा सकते हैं। इन सब का समाधान हार मान लेना नहीं है बल्कि मन को बारंबार कृष्ण की ओर लौटाने का अभ्यास करना है। भगवद गीता 6:26 में कृष्ण निर्देश देते हैं कि मन जहां जहां और जब जब भटके उसे वापस लाकर वश में करना चाहिए। जप, प्रार्थना और पूजा में ध्यान भटके तो उसे पहचाने, नम्रता से ध्यान वापस लाए और अभ्यास जारी रखे। आध्यात्मिक जीवन को केवल ध्यान भटकने की अनुपस्थिति से न आंके, ये भी देखे कि आप बार बार कृष्ण की ओर लौटने के लिए कितने तत्पर है। एक व्यवहारिक अंतर यह है कि हम वस्तुएं मांगे या भक्ति मांगे, दो प्रकार की प्रार्थनाएं होती है। पहली इस प्रकार, हे कृष्ण, कृपया सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार कर दे। और दूसरी प्रार्थना यह है कि कृष्ण, कृपया मुझे सही काम करने का मार्ग दिखाए, जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता उन्हें स्वीकार करने में सहायता दे और मुझे आपसे जुड़ा रखे। दूसरी प्रार्थना समर्पण की गहरी तत्परता व्यक्त करती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भौतिक समस्याओं में सहायता नहीं मांग सकते बल्कि ऐसे अनुरोधों को आध्यात्मिक विकास के व्यापक लक्ष्य के भीतर रखा जाता है। दैनिक जीवन में पूजा और प्रार्थना को जोड़ने का ये व्यवहारिक तरीका है। तो प्रिय श्रोतगण, हमने पूजा और प्रार्थना के अर्थ, विग्रह या मूर्ति आराधना के महत्व तथा सुदामा, गजेंद्र, प्रहलाद और महारानी कुंती के उदाहरणों पर चर्चा की। आइए इन शिक्षाओं को एक साथ रखें। पूजा केवल वस्तुएं अर्पित करना नहीं है, ये स्वयं को भक्ति सेवा में अर्पित करना है। प्रार्थना केवल भौतिक लाभ मांगना नहीं है, ये विनम्रता, कृतज्ञता, समर्पण और भगवान की सेवा की इच्छा के साथ कृष्ण के पास जाना सिखाना है। ये शिक्षाएं हमें व्यवहारिक मार्ग देती है। अधिकृत भक्ति विधि के अनुसार कृष्ण की पूजा करें, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करें, शास्त्र सुने, प्रसाद ग्रहण करें, भक्तों का संग करें और अपना जीवन उसकी सेवा में समर्पित करें। और फिर तीन महत्वपूर्ण शास्त्रीय निर्देश, भक्ति से

0: अर्पित करे पत्र पुष्प फल और जल, और अपने कर्म समर्पित करे, अपने कार्यों और अर्पणों को कृष्ण से जोड़े, फिर भौतिक लाभ को सर्वोच्च लक्ष्य बनाने के बजाय भगवान के प्रति निष्काम भक्ति की आकांक्षा करे। आज के इस पूजा और प्रार्थना के विषय पर यदि हमारे किसी भी श्रोतागणों को कोई भी प्रश्न या टिप्पणी हो तो आप उसे हमें ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है vedvani@gmail.com। आप सभी को हमारा साथ देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब हम आपकी सेवा में कुछ प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते हैं।
1: श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम।

सभी एकत्रित कौरवों और पांडवों के समक्ष जब दुशासन ने द्रौपदी के केश और वस्त्र पकड़े तो वह अनन्य भाव से पुकारने लगी, गोविंद दामोदर माधव।

हे भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, मधु और कैटभ नामक राक्षसों के शत्रु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मुरारी मुर नामक दैत्य का संहार करने वाले, भक्तों पर अनुकंपा करने वाले, हे केशव सभी लोकों के स्वामी, हे गोविंद दामोदर माधव, कृपया मेरा उद्धार करें। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चित्त वृत्ति

दूध दही मक्खन आदि बेचने की इच्छा रखते हुए एक गोपी का मन कृष्ण के चरण कमलों में इतना लीन था कि उसने बिक्री के लिए दूध कहने की जगह भ्रमित होकर कहा, गोविंद दामोदर माधव।

अनाज से भरे उखल में मूसल से प्रहार करते हुए प्रमुग्ध गोपियां एक ही गीत गाती थीं, हे गोविंद दामोदर माधव।

एक कमल नयन कन्या ने अपने हस्त कमल पर बैठे लाल चोंच वाले पालतू तोते को निर्देश दिया। उसने कहा, गोविंद दामोदर माधव।

हर घर में गोपियों की टोली पिंजरे में बंद तोते की तरह टूटे फूटे शब्दों से पुकारती हैं, गोविंद दामोदर माधव।

पालने में लेटे हुए छोटे बालक के साथ उसे विश्राम कराने के लिए सभी गोपियां निपुणता से संगीत के सुरों और ताल युक्त रचनाएं गाती हैं। गोविंद दामोदर माधव।

बलराम के अनुज चंचलता से खेलते हुए व्याकुल नेत्रों से उसे चकमा दे रहे थे। तभी उस गोपी ने उन्हें लुभाने के लिए ताजे मक्खन की एक गेंद लेकर उन्हें पुकारा, हे गोविंद, दामोदर, माधवा।

मेरी जिह्वा इन मनोहर अलंकारिक आनंदमय अक्षरों की उपस्थिति के प्रभाव से मेरा मुख कमल के समान हो गया है और आप वहां खेलने वाले हंस की तरह हैं। अपने सबसे बड़े आनंद के रूप में हमेशा गोविंद, दामोदर और माधव नामों का उच्चारण करें।

लक्ष्मी देवी के एकमात्र स्वामी एक छोटे से ग्वाल बाल के रूप में माँ यशोदा की गोद में बैठे थे, उनका स्तनपान कर रहे थे। आनंद में लीन उन्होंने उन्हें गोविंद, दामोदर और माधव के रूप में संबोधित किया।

ब्रज धाम में कृष्ण अपने सखाओं और पशुओं की रक्षा करने वाले समकक्ष आयु के बालकों के साथ खेल रहे थे। माता यशोदा ने बड़े प्रेम से अपने पुत्र को पुकारा, हे गोविंद, दामोदर, माधव।

माता यशोदा द्वारा गाय की डोरी से उखली में बलपूर्वक बांधे जाने पर माखन चोर ने धीरे से फुसफुसाया, गोविंद दामोदर माधव।

अपने ही आंगन में कृष्ण चंचलता पूर्वक कंगन से खेल रहे थे, तो एक गोपी मक्खन की एक गेंद उनके पास लेकर गई और उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपनी हथेली से उनकी आंखें बंद कर दी। हे गोविंद, दामोदर, माधव, और मानो कह रही थी कि बताओ मेरे पास आपके लिए क्या है।

घर घर में विभिन्न अवसरों पर ग्वालों के समूह इकट्ठा होते हैं और साथ में वे सदैव कृष्ण के दिव्य नामों का जप करते हैं, गोविंद, दामोदर और माधव।

0: जनमध्य संस्थम गोविंद दामोदर माधवेति।
1: उनका चेहरा मन भावन है और उनके होंठ बांसुरी की दिव्य ध्वनि से पूरित हैं। गायों, गोपों और गोपियों के बीच वह एक प्रवाल वृक्ष के नीचे खड़े हैं। गोविंद दामोदर माधवेति।

ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने के बाद और माता यशोदा के पुत्र की बालवत उठखेलियों को याद करते हुए गोपियां माखन मथते हुए उच्च स्वर में गाती हैं, गोविंद दामोदर माधव।

मंथन करने के बाद घर में माखन का एक ताजा डला रखकर माता यशोदा को अब संदेह हुआ कि अब वह खा लिया गया होगा। उन्होंने कहा, हे मुरारी, गोविंद, दामोदर, माधव, अब मुझे सच बताओ।

0: भक्ति गोप्यो थ सखी समेता गोविंद दामोदर माधवेति।
1: घर घर पूजा समाप्त करने के बाद एक युवा गोपी जैसे कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्रेमवश माखन मथती है और फिर सभी गोपियों और उनकी सखियों के साथ मिलकर गाती है, गोविंद दामोदर माधव।

एक बार सुबह सुबह जैसे ही एक गोपी माखन से भरे बर्तन में अपनी मथनी एक तरफ रख रही थी, उसने मुकुंद को देखा। फिर उसने गोविंद, दामोदर और माधव के बारे में विभिन्न प्रकार से गीत गाना शुरू किया।

बिना नहाए या खाए भी कृष्ण खेल में लीन थे। स्नेह से अभिभूत माँ यशोदा, जो सदैव केवल अपने पुत्र के कल्याण के बारे में सोचती थी, ने पुकारा, गोविंद, दामोदर, माधव, आओ स्नान करो और कुछ खा लो। सुखम शयानम निलये च विष्णुम देवर्षि मुख्या मुन।

देवर्षि नारद और अन्य मुनि सदैव शय्या पर विश्राम करने वाले भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहते हैं। वे हमेशा गोविंद, दामोदर और माधव के नामों का जप करते हैं और इस प्रकार वे उनके समान आध्यात्मिक रूप प्राप्त करते हैं।

भोर में नींद से उठकर अपने नियत कर्मों को पूरा करने और वैदिक पाठ के बाद सबसे प्रमुख विद्वान ब्राह्मण सदैव उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं, गोविंद दामोदर माधवर।

वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का गोविंद से वियोग के कारण व्याकुलता देखकर गोपों और गोपियों के समूहों ने अपनी कमल नैनों में आंसू भरकर गाया, गोविंद दामोदर माधव।

गायें सुबह सुबह चरने के लिए निकल चुकी थीं। माँ यशोदा ने अपने हाथ की हथेली द्वारा अपने सोए हुए बेटे को धीरे से जगाया और कहा,

लंबे मूंगा के रंग के जटा जैसे बालों के साथ और केवल पत्ते, पानी और हवा खाकर शुद्ध ऋषि पेड़ों के नीचे बैठते हैं और गोविंद, दामोदर और माधव जप करते हैं। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषां व्रजस्त्रियः।

इन शब्दों को कहने के बाद व्रज की स्त्रियां, जो कृष्ण से इतनी आसक्त थीं, उनसे अपने जल्द ही होने वाले वियोग से अति विचलित अनुभव कर रही थीं। वे सभी सांसारिक लज्जा को भूल गईं और उच्च स्वर में चिल्लाईं, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव।

कभी कभी एक गोपी एक रत्नमय पिंजरे के भीतर एक तोते को पढ़ाने में लगी होती, जैसे आनंद कंद आनंद का स्रोत, व्रज चंद्र व्रज का चंद्रमा, कृष्ण गोविंद दामोदर और माधव है।

कमल नयन भगवान एक बछड़े की पूंछ से एक चरवाहे की शिखा बांध रहे थे। जब उनकी मां ने उन्हें पकड़ लिया, उनकी ठुड्डी उठाई और कहा, गोविंद दामोदर माधव

सुबह सुबह उनके प्रिय ग्वाल बालों का एक समूह गायों की देखभाल के लिए हाथ में लाठी डंडे लेकर आया। उन्होंने असीमित आदि पुरुष परम भगवान को संबोधित किया और कहा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव।

जब भगवान मुरारी कालिया नाग को दंड देने के लिए कदंब की शाखा से पानी में कूदे तो सभी गोपियां और ग्वाल बाल वहां पहुंच गए और चिल्लाए, ओह गोविंद, दामोदर, माधव।

अक्रूर से मिलने के बाद भगवान मुकुंद ने कंस के धनुष भंजन समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा में प्रवेश किया। तब सभी नागरिक चिल्लाए, जय गोविंद, जय दामोदर, जय माधव।

जब वसुदेव के दोनों पुत्रों को वास्तव में कंस के दूत द्वारा वृंदावन से बाहर ले जाया गया तो यशोदा घर के भीतर सिसक कर रोते हुए बोली, गोविंद दामोदर माधव।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन। ओए होए ब्रिस्बेन वालों, उठ गए हैं आप क्या? या अभी भी अलार्म के साथ साथ नेगोशिएशन कर रहे हो भाई? कोई कह रहा होगा भाई 5 मिनट रुक जाओ, कोई कह रहा होगा भाई ब्लैंकेट के अंदर से निकलने का मन नहीं कर रहा, क्यों ना भाई आज वर्क फ्रॉम होम कर लिया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, जिंदगी में ना कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो दोबारा नहीं आते, और उनमें से एक है हम सभी की सुबह। जी हाँ, सो कम ऑन स्लीपी हेड्स, आंखें खोलिए, एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और अपने दिन को एक फ्रेश स्टार्ट कर दीजिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जाने जैन, लेकर आई हूँ एक प्यारी सी सुबह में, जिसमें होगी इंटरेस्टिंग बातें, ऑस्ट्रेलिया की अपडेट्स, बॉलीवुड का तड़का, म्यूजिक की मस्ती और कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपको मुस्कुराने वरना मजबूर कर ही देंगे। सो एक इंटरेस्टिंग सवाल आप सभी के लिए, अगर आपको आज के पूरे दिन के लिए ना एक सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या चूज करेंगे भाई? टाइम को रोकना, 1 सेकंड में सारा काम खत्म कर देना, या फिर बिना जिम जाए फिट हो जाना? मैं तो भाई तीसरा ऑप्शन सीरियसली कंसिडर करूंगी, सीरियसली। जी हाँ, सो दोस्तों, जाने का सफर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सो अपनी इस प्यारी सी मॉर्निंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं। और हाँ जी, गाड़ी चला रहे हैं तो भाई रोड पर नजर जरूर रखिएगा, सेफ ड्राइव करिए और म्यूजिक का मजा लीजिए। चलिए इस खूबसूरत सुबह का अंदाज जो है और आगाज जो है करते हैं एक एवरग्रीन बॉलीवुड मेलोडी के साथ, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, हो गए हैं ना आप रेडी शेडी? हाँ जी, सुन रहे हैं ना कि? तो चलिए फिर इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट सुन लेते हैं। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स गेम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सीईओ किंडी हुक दिसंबर 2026 में अपना पद छोड़ेंगी। इसके बाद उनकी जगह लेने के लिए नए लीडर की तलाश जो है वो शुरू होगी दोस्तों। और ओलंपिक्स की तैयारियों के बीच लीडरशिप में ये चेंज इम्पॉर्टेंट है। गेम्स के बजट और प्लानिंग पर भी नजर बनी हुई है। तो सोचिए, जब दुनिया भर के एथलीट्स जो है वो ब्रिस्बेन आएंगे तो ये सिटी इंटरनेशनल स्पोर्ट लाइट में होगी। जी हाँ, आपको क्या लगता है ओलंपिक्स ब्रिस्बेन के लिए कितने बड़े अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, जरूर बताइए। तो आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, इस गीत के बाद एक बार फिर से बहुत प्यारा प्यारा वाला वेलकम आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेन में। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं ब्रिस्बेन के वेदर की ओर। ब्रिस्बेन वालों, घर से निकलने से पहले भाई ब्रिस्बेन तो आप चेक करेंगे, वेदर चेक कर लेना। देखिए जी, इतना प्यार हो गया है ना आप सभी से कि मेरी जुबान भी फिसलने लगी। तो चलिए जी, चेक करना मत भूलिएगा वेदर। और ऑस्ट्रेलिया का ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी की फोरकास्ट के मुताबिक वेडनेसडे आज यानी कि 14th October को ब्रिस्बेन में शावर्स की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने का फोरकास्ट है, इसीलिए अम्ब्रेला साथ रखना यूजफुल हो सकता है। बाहर निकलने से पहले लेटेस्ट फोरकास्ट और वेदर वार्निंग्स जो है वो जरूर चेक कर लें। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ आइए बात करते हैं एयरपोर्ट सेफ्टी अपडेट की। नॉर्थ क्वींसलैंड एयरपोर्ट पर जेट स्टार पैसेंजर एयरक्राफ्ट और एक वैन के बीच नियर मिस की रिपोर्ट सामने आई है। अथॉरिटीज इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट जो है वो मूवमेंट के आसपास सेफ्टी प्रोसीजर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये इंसिडेंट उसकी याद दिलाता है। तो दोस्तों ये थी ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। न्यूज के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी जरूरी है दोस्तों। वेदर चेक करें, टाइम से निकले और ड्राइविंग करते वक्त भाई फोन को हाथ ना लगाए। अब वक्त है भाई म्यूजिक का, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, दिल में बस जाते हैं और महसूस किए जाते हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, चलिए जी अब थोड़ी सी बात आपकी और मेरी। जी हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों। आपके लाइफ में ऐसा कौन सा इंसान है जिसका सिर्फ एक फोन कॉल ना जो आपका मूड है भाई वो बिल्कुल ठीक कर देता है? मम्मी, पापा, हस्बैंड, वाइफ, बेस्ट फ्रेंड, या फिर वो दोस्त जो खुद परेशान होता है लेकिन आपको हंसाना जो है ना कभी भूलता नहीं है? जी हाँ, कभी कभी दोस्तों हमें बड़े गिफ्ट्स की जरूरत नहीं होती, बस किसी अपने का एक मैसेज आ जाए तो दिल कहता है चलो भाई दुनिया अभी भी अच्छी है। तो आज एक छोटा सा चैलेंज है, अपने किसी भी स्पेशल पर्सन को मैसेज करिए और लिखिए थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय लाइफ। जी हाँ, बस इतना सा मैसेज किसी के चेहरे पर स्माइल आ सकता है। और याद रखिए दोस्तों, प्यार जताने के लिए किसी स्पेशल ओकेजन या फिर स्पेशल डेट या स्पेशल डे का वेट नहीं करना है। आपकी आरजे की तरफ से आज का मैसेज किसी की लाइफ में ना खुशी की वजह बनिए, प्रॉब्लम की नहीं। तो इसीलिए बस अपनी खुशियां बांटते रहे, किसी का दिल ना दुखाए भाई। जब दिल दुखता है ना बाकी ही बहुत तकलीफ होती है। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

कर ही चुके हैं। कॉफी विद करण की सीजन 9 का जो प्रीमियर है 14th of October यानी कि आज शेड्यूल्ड है और पहले एपिसोड में सलमान खान नजर आने वाले हैं। करण जौहर के शो पर सेलिब्रिटीज की जो कैंडिड कन्वर्सेशंस है और अनएक्सपेक्टेड रेवलेशंस जो है हमेशा चर्चा का टॉपिक रहते हैं। अब देखना ये है दोस्तों कि सलमान खान अपने सिग्नेचर ह्यूमर के साथ ही साथ क्या इंटरेस्टिंग बातें शेयर करते हैं। सो आप कहीं मत जाएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो प्रसवानी में।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट है। और अब हम भाई बॉलीवुड की दुनिया में तो

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, में हूँ आपकी दोस्त स्टार जी जानी जैन। तो भैया जो आइए एंट्री करते हैं दृश्यम 3 में। जी हाँ, यानी दृश्यम 3 की जो बॉक्स ऑफिस की चर्चा है वो भाई खत्म ही नहीं हो रही है। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 भी एंटरटेनमेंट हेडलाइंस में बनी हुई है। दोस्तों, फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को लेकर काफी डिस्कशन हो रहा है। सस्पेंस थ्रिलर्स के जो फैंस हैं उनके लिए ये फ्रेंचाइज हमेशा क्यूरियोसिटी जो है वो भाई लेकर आती है। जी हाँ, आपको क्या लगता है दोस्तों, सस्पेंस मूवीज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? पावरफुल स्टोरी, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट या फिर एक्टर की परफॉर्मेंस? जल्दी जल्दी से मैसेज करके बताइए, ओनली ऑन रेडियो रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रसवानी मिस। दोस्तों, अगर हम बात करें बॉलीवुड के लेजेंडरी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की, तो उनकी जर्नी एक रिमाइंडर है कि पेशेंस और डेडिकेशन इंसान को कितनी दूर तक ले जा सकता है ना। उनके करियर में कई चैलेंजेस आए, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और काम की जो प्रति कमिटमेंट है ना, उन्हें जनरेशंस का फेवरेट बनाया हुआ है। जी हाँ, वैसे बॉलीवुड में एक बात तो पक्की है, फिल्म की स्टोरी में ट्विस्ट हो या सेलिब्रिटीज की लाइफ में, ऑडियंस को भाई हर अपडेट चाहिए। लेकिन असली सुपरस्टार वो है जो अपने रियल लाइफ में भी अच्छा इंसान बने। इसे चलिए अब एक बॉलीवुड क्लासिक हो जाए, सुनते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो प्रसवानी।

मेरे प्यारे बिस्मिल लिसनर्स, देखते ही देखते हमारी मॉर्निंग शो का वक्त भी हो गया है कंप्लीट। उम्मीद है कि भाई आज की सुबह आपके लिए लेकर आई होगी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ मोटिवेशन और ढेर सारी स्माइल्स। आज की भाई तीन बातें हमेशा याद रखना। पहली, अपने दिन की शुरुआत जो है वो ग्रैटिट्यूड के साथ जरूर करिए। दूसरी बात, अपने सपनों के लिए भाई छोटे ही सही लेकिन कंसिस्टेंट जो है वो स्टेप्स जरूर लीजिएगा। और तीसरी, अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ी और काइंडनेस शेयर करिए। लाइफ सिर्फ डेस्टिनेशन का नाम नहीं है दोस्तों, ये वो छोटे छोटे मोमेंट्स भी है जिन्हें हम रोज जीते हैं। तो आज जब आप अपने काम पर पहुंचे, अपनी क्लास अटेंड करें या फिर घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालें, तो एक बात याद रखिए, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है और आपके छोटे एफर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। मैं हूं आपके दोस्तों रोस्ट आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे थे रेडियो प्रसवानी। अपना ख्याल रखिएगा, सेफ ड्राइव करिए, पानी पीना मत भूलिएगा और अपने स्माइल को बिल्कुल मत खोना। मिलते हैं फिर एक नई सुबह नए टॉपिक्स और नए गाने के साथ कल। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप स्प्रेडिंग positive vibes. Have a beautiful Wednesday, Brisbane. Good morning once again and take care. Bye-bye.

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एम। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। वीडियो पोस्ट ना करें, घर के अंदर रहें। सऊदी अरेबिया में भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। ये एडवाइजरी तब जारी की गई है जब सऊदी शहरों के लिए भारतीय एयरलाइंस की सेवाएं 17 अक्टूबर तक सस्पेंड होने के कारण उड़ानों में रुकावट आई है। रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को शांत और सतर्क रहने, हवाई हमलों की स्थिति में घर के अंदर रहने और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। जापान में 30 टन वजनी और 160 मीटर लंबी रेस खींचने की होड़। जापान के नाहा में पारंपरिक ग्रेट टग ऑफ वॉर प्रतियोगिता में हजारों लोगों ने 160 मीटर लंबी और 30 टन वजनी रस्सी खींची। ये परंपरा 15वीं सदी से चली आ रही है। लोग अच्छी फसल, सेहत और संतान सुख की कामना के लिए एक साथ जुटे थे। उत्सव में पूर्व और पश्चिम की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। हालांकि ये मुकाबला इस साल करीब 10 मिनट तक चला, लेकिन मैच ड्रॉ रहा। ब्रेग्जिट जनमत में रशिया ने दिया था दखल, ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहैम का सनसनीखेज दावा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम एक सनसनीखेज दावा करके सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2026 में यूरोपीय यूनियन से अलग होने के ऐतिहासिक ब्रेग्जिट जनमत संग्रह में रशिया का दखल था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये दखल कैसे हुआ, ना ही उन्होंने अपने दावों का कोई सबूत पेश किया है। उन्होंने जर्मनी और फ्रांस के मतदाताओं को भी रशिया से दूर रहने के लिए आगाह किया है। तुम आतंकवादी हो, अमेरिका में मोहम्मद यूनुस का जोरदार विरोध, बांग्लादेशी प्रवासियों ने घेरा। बांग्लादेश की पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेशी प्रवासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जब वो हवाई अड्डे पहुंचे तो प्रवासियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और गंभीर आरोप लगाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आतंकवादी कहा और उन पर कुछ लोगों की जान लेने तथा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए। मुख्य सलाहकार पद से हटने के बाद यूनुस की ये पहली विदेश यात्रा है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारतीय सूट जो 1500 डिग्री सेल्सियस पर 190 सेकेंड तक बचाव करेगा। मेक इन इंडिया टेक्निक पर बने फायर सेफ्टी सूट बहुमंजिला इमारत, कारखाने, औद्योगिक इकाइयां और रिफाइनरी में भयानक आग लगने पर जान बचाने में मददगार साबित हो सकेंगे। ये विदेशी सूट के मुकाबले सस्ते और आग के उच्च तापमान को रोकने वाले हैं। इससे उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, IIT कानपुर, BHU और रुड़की के सहयोग से मथुरा के स्टार्टअप सिक्योर फायर इनोवेशन फायर प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। कंपनी ने करीब 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान में 190 सेकंड तक बचाव करने का दावा किया है। सूट में सेंसर युक्त अलार्म भी लगा हुआ है। अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूं कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: लाओ टंकी, गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: जी हाँ दोस्तों, हम वापस आ गए हैं और जैसे हमने आपसे कहा था कि एक इंटरव्यू लेकर आएंगे
1: जी
0: प्रेरणा के साथ, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ है प्रेरणा। आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू टू लेजीज व्हाइल यू वर टॉकिंग।
1: व्हाई नॉट।
0: गुड मॉर्निंग प्रेरणा, वेलकम, नमस्ते।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: और इस समय दोस्तों 8:30 हो गए, इसका मतलब 8:30 बज गया है। और हाँ, भूलना मत, इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे किसके साथ? सर
1: सताक्षी
0: के साथ।
1: सॉरी, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट वन सॉन्ग आई वांटेड टू प्ले, आई एम सो सॉरी।
0: फिर पंजाबी प्रोग्राम रहेगा 11:00 और निव्या के साथ 3:00 से। एनीवे, चलो कल हम आएंगे, कल हम भी हम रहेंगे।
1: टुमारोज थर्सडे, राइट?
0: हाँ,
1: ओके, विल कम, विल टर्न अप जस्ट फॉर यू।
0: यस।

0: बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि हमारे साथ है पंडित सुरेश जी। पंडित जी नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो मिज़बानी पर।
1: नमस्कार जतीश जी और अमिता जी,
2: हरिओम पंडित जी,
1: दोनों को। और बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है और खासकर मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा जो ऐड आता है 30 तारीख अक्टूबर वाली भजन कीर्तन या भजन बकरा या कुछ बोले
0: जी,
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उसका जो महत्व है यानी किसी के सहायता किसी के जिंदगी की बात है उसमें कुछ हम मदद करेंगे तो यही तो इसी कारण तो हम पैसे कमाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कुछ दान कुछ उसमें हम दोनों बात हो ना कैसे कहावत है बोले आम के आम गुठली के दाम।
0: जी जी जी,
1: तो हम कुछ मदद भी करेंगे और कुछ उससे सीखेंगे भी।
0: जी बिल्कुल।
1: मैं आग्रह करूंगा जो सुन रहे हैं आपका ये तो चल रहा है लेकिन जो सुन रहे हैं हम लोग का वार्तालाप या बच्चों को लाएं परिवार को लाएं फ्रेंड्स को बताएं कि ये कार्यक्रम चल रहा है किसी के सहायता के लिए तो जरूर लोग आएं अच्छे नंबर क्योंकि वहाँ का 1500 का कैपेसिटी है। अगर 1000 लोग भी हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो यही हमारी कहना है और दूसरी बात है अब जबकि माता देवी का माता का समय चल रहा है तो सनातन 550 वेम्बली रोड पर ये प्रोग्राम होगा कल से शुरू होगा जो कि हमारे सहयोगी स्विच रमान मंडली के माध्यम से प्रोग्राम होगा। भजन कीर्तन माता की कुछ बातें प्रवचन सुनने को मिलेगी तो जरूर भोजन पानी का प्रबंध है और 6:30 बजे से अगर कोई हवन करना चाहता है तो 6:30 बजे से आ जाए हवन करे फिर 7 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। दीदी 8 बजे।
0: अच्छा जी,
1: आप लोग निमंत्रण है अमिता जी आप जी। लोग भी आ सकते हैं।
2: धन्यवाद पंडित जी,
1: ये सनातन का प्रोग्राम है जी।
0: अच्छा जी, बहुत बहुत
1: तो दीपावली का फंक्शन वहीं पर होगा।
0: अच्छा जी,
1: अक्टूबर को जी।
0: अच्छा जी पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज टू स्प्रेड द वर्ड।
1: जी हाँ।
0: अच्छा जी,
1: जो हम कल से शुरू होगा हमारे सनातन पर माता की प्रोग्राम
0: जी
1: भी हम बोला करेंगे कि 30 तारीख वाला में जो लोग जरूर आए
0: जी
1: और
0: जी
1: करें।
0: अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, आप
0: धन्यवाद जी। तो चले दोस्तों, पंडित सुरेश जी हमारे साथ हमेशा हो जाते हैं और अच्छा लगा सुनकर। ओके, अब समय भी थोड़ा इस प्रोग्राम में थोड़ा कम है और एक पुराना
2: गीत। ओह या 15 मिनट्स टू राउंड अप।
0: चलो पुराना गीत।
2: श्योर, व्हाई नॉट।
0: ये जो गीत है अमिता, आई लाइक दिस सॉन्ग इवन बिफोर आई बिकेम अ टीनेजर। यानी छोटे से।
2: सो यू वर लिटिल, लेट्स हियर इट।
0: वेरी लिटिल से मैं ये गाना, मालूम नहीं क्यों गाना मुझे पसंद था, शायद आप लोगों को भी अच्छा लग जाए दोस्तों। चलो सुनते हैं इस गीत को।
3: एक तो मैंने लिख ली है वो बम्बई से डालूंगा, फिर लिखूंगा जहाज पर से, फिर एडन से, फिर मार्शल से और फिर लंदन पहुंचकर।
4: मुझे भूल तो नहीं जाता।
3: ऐसी बातें कर रही हो तुम। मनीष ने जिंदगी में सिर्फ दिव्यानी को चाहा है और कोई लड़की कभी उसकी जिंदगी में नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे पास रहूं या न रहूं दिव्यानी, तुम्हारी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। दिव्यानी एक बार फिर तो कहो, रहें न रहें हम, मैं क्या करेंगे, बन के कली बन के सबा आ गए वफा में।
4: रहे

0: मैंने सोचा था हमारी ये जुदाई भी थोड़े ही समय के लिए है।
1: तुमने ठीक ही समझा था उसकी चिट्ठी से, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ सका।
0: मैं माँ हूं ना, सुपर्णा के दिल की बात मैं ही समझ सकती हूँ।
1: हाँ।
0: मनीष, एक बार मुझे दिखा दो तो उस लड़के को।
1: सच? मैं यही चाहता था तुझे जानने।

0: अब हम डेफिनेटली जाने वाले हैं यहाँ से
1: जी. सो वी विल से गुडबाय, नमस्ते, हैव अ ब्यूटीफुल डे,
0: वी शैल सी यू टुमारो.
1: वी शैल.
0: अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों.
1: नमस्ते.
0: और बी गुड.
1: यप.
0: Our listeners are always good.
1: Of course they are.
0: कल मिलते हैं दोस्तों.
1: We've got wonderful listeners.
0: Yeah. नमस्कार.
1: नमस्ते.

दोस्तों, खुशियाँ आज हैं, इस पल में हैं, और खुशियाँ किसी का इंतजार नहीं करती हैं। ये तो जब मिले, जिस पल मिले, उसी पल इन्हें बटोर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते ही रहें और ये खुशियाँ आकर आपकी जिंदगी में आपको प्रेजेंट मोमेंट में ना पाकर वापस लौट जाएं। इसलिए दुआ करते हैं हम और एक सजेशन देते हैं आपको कि हर पल अपनी खुशियों का इंतजार करते रहिए और जैसे ही वो आपके दरवाजे पर दस्तक दें, उन्हें झट से पकड़ लीजिए और फिर न जाने के लिए रोक लीजिए। रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM सताक्षी के साथ हैं आप, और सताक्षी कहती है आपको गुड मॉर्निंग। जी हाँ, गुड मॉर्निंग यानी कि वो मॉर्निंग जो एक बार हमें फिर से ये उम्मीद दे रही है, संदेश दे रही है और हमसे चुपके से कानों में धीरे से कह रही है कि सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज एक बार फिर से हमारे अपनों का साथ हमारे साथ है और हमें चंद सांसें मिली हैं उनकी ख्वाहिशों, उनके अरमानों, उनके सपनों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, आज इस नए दिन का स्वागत एक बार फिर से बाहें फैलाकर करिए और जैसा कि मैंने कहा कि खुशियों को वेट मत करवाइए, वो जैसे ही आपको मिले उन्हें तुरंत अपना बना लीजिए, उनको जी लीजिए। चलिए अभी अपने शो को भी आगे बढ़ाते हैं और वेट करते हैं उन लोगों का जिन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है, जो अभी तक सो रहे हैं। तो जब तक वो हमें ज्वाइन करते हैं, तब तक हम सुन लेते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा क्यूट सा ट्रैक जो कि हमारी मॉर्निंग को और भी खूबसूरत और भी स्पेशल बना देगा। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेनी, सताक्षी आपके साथ है।

ताजी हवा, सूरज की हौले हौले से पहुंचती हम तक किरणें और एक नई उम्मीद, एक नए दिन का एहसास, ये सब लिए आई है आज एक और हसीन सुबह। दोस्तों, ये सुबह मुबारक हो, ये हसीन सुबह मुबारक हो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, बता दूं आपको कि आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी 1701 AM पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। इसके पहले के सफर में आगे बढ़े, एक बहुत ही प्यारी सी रीत हमने यहाँ पर शुरू की है उन लिसनर्स को विश करने के लिए जिनका आज है बहुत ही स्पेशल डे। तो हम विश करते हैं आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, वो जो आज बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल्स हैं उनको हम विश करते हैं उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी जो है प्यार से, खुशबू से और खुशियों से यूं ही महकती रहेगी। आपकी जिंदगी से जो एक्साइटमेंट है, जो जिंदगी को जीने की चाहत है, वो कभी कम नहीं होगी। मेरे वो लिसनर्स जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्यार को एक नाम दे पाते हैं, एक मुकाम पर पहुंचा पाते हैं, और आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते थे, उसके साथ आप मना रहे हैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी। तो इस साथ को बहुत संभाल के रखिएगा। और रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसके साथ इनकी डोर को जरा बहुत प्यार से थामना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इन्हें तेज खींच देंगे तो ये टूट जाएगी, और अगर ढील दे देंगे तो भी इसमें वो मजा नहीं रहेगा जो होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही प्यार से संभाल कर रखिए अपने रिश्तों को। और जिनके लिए भी आज का दिन बहुत ही खास है, उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सबके लिए ये ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, ये सबको डेडिकेटेड है, आप सबको। जी हाँ, क्योंकि आज का दिन आपकी जिंदगी में बहुत खास अहमियत रखता है। सो एंजॉय कीजिए इसे, बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी 1701 AM, क्योंकि आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है।

0: सुकून जुनून की संगत क्यों मांग रही है? सासे शरारत करने की इजाजत क्यों मांग रही है?
1: वो लोग जिनको हमेशा एक बात का गिल्ट रहता है, जब भी वो किसी को मैसेज करते हैं, मतलब किसी को नहीं, किसी अपने खास को, और रिप्लाई देर से आता है, तो हमेशा उनकी ये शिकायत रहती है कि भाई तुम इतनी देर से रिप्लाई क्यों करते हो, तुम इतना देर से क्यों मेरा मैसेज सीन करते हो, है ना? आपको पता है क्या, प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिप्लाई देर से आया है, प्रॉब्लम ये है कि रिप्लाई में क्या लिख कर आया है, रिप्लाई आया क्या है। बहुत सारी बार किसी का रिप्लाई आने के बाद आपकी आंखें छलक आती हैं, लेकिन कभी कभी आंखें छलकने के साथ आपकी खुशी गायब हो जाती है, आपकी स्माइल जो उस मैसेज को देखकर आपके चेहरे पर आई होती है ना, वो गायब हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी आंखें छलकती तो है, लेकिन वो स्माइल जो है वो कहीं जो खो गई थी, वो स्माइल भी वापस आ जाती है उस रिप्लाई के आने से। ये एक डिफरेंस है दोनों तरह के रिप्लाई आने में। तो रिप्लाई देर से ज़रूर आए, रिप्लाई क्या आया है उसको पढ़कर आपकी आंखें छलकी हैं, लेकिन वो जो खुशी आनी चाहिए थी या जो थी चेहरे पर, वो गायब हुई है या वापस आई है, ये बहुत मैटर करता है। सो इस बार शिकायत करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि वो रिप्लाई क्या है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रीजी प्रसवानी 1701 AM, क्योंकि आप सुन रहे हैं, जी हाँ, इट हैपन्स।

मानी 1701 AM इस वक्त आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों, यूं तो जिंदगी में बहुत सारे लोग खास हैं, बहुत सारे लोग अहम हैं, लेकिन वो एक इंसान जो आपकी जिंदगी में कब आपकी जिंदगी बन गया आपको पता नहीं चला। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना कि किसी का रिप्लाई आने पर आंखें खुशी से चमक जाती हैं। मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ कि नॉर्मली एक ऐसे इंसान को ही आप शिकायत करते हैं रिप्लाई देर से आने की, जो आपके दिल के करीब है, जिसे आप कब अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके, आपको खुद समझ नहीं आया। लेकिन बहुत जरूरी है कि जिसके साथ आप जिंदगी के रास्ते पर चल रहे हैं, जिसका रिप्लाई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव रिप्लाई ऑफ कोर्स, आप कोशिश कर रहे हैं कि इधर आप मैसेज करें और उधर वो आपको झट से आपकी बात का आंसर कर दे, एक चैटिंग का सिलसिला जो है वो आपके बीच चलता रहे, ये देखना बहुत जरूरी है कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है आपको रिप्लाई करने में। बहुत जरूरी है कि अपने इमोशंस को पूरी तरह से उसे दिखाने से पहले ये समझा जाए, ये जाना जाए कि क्या वो वाकई उस बात को समझ पा रहा है जो कि आप उसे एक्चुअली बताना चाह रहे हैं, या वो उस इमोशन के वाकई लायक है जो इमोशन आप उसके लिए रखते हैं, है ना। बहुत ज़रूरी है, वरना ये इमोशंस जो हैं यही आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रसवानी 1701 AM।

0: ना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: YouTube is Fani 1701 AM. Sataakshi ke saath aap sun rahe hain. It happens. Aapka apna breakfast show. Aur ye breakfast show kehta hai ki is waqt waqt hai. Aaj ke gaano ki hat trick ka. Yani un teen tracks ka jise aap aur hum milkar yahan par enjoy karne wale hain. To chaliye phir sunte hain gaano ki hat trick ka ye pehla track. Stay tuned, Radio Brisbane, Sataakshi hai aapke saath.

गानों की हैट्रिक सुबह के इस वक्त रेडियो प्रस्वानी पर इट हैपेंस के सफर में आप एंजॉय कर रहे हैं। तीन एनर्जी से भरे हुए गाने जो आपको भी एनर्जी से भर देंगे, वही गाने यह मैंने आज आपके लिए चूज किए हैं। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी 107.1 AM, सताक्षी आपके साथ।

0: रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM और सताक्षी का साथ। जी हाँ, यही सफर इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस में, और ये वक्त है गानों की हैट्रिक का। आज की गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक आपके लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी इट हैपेंस में ऐसे बहुत सारे गाने आपको सुनने हैं जो कि आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

काफी हो। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से है रेडियो प्रसवानी 1701 पर, सताक्षी है आपके साथ और आप मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट वाला शो इट हैपेंस वेल। हमने बात की थोड़ी देर पहले, आज प्यार पर, आज इश्क पर हम बात कर रहे हैं और बहुत सारी बातें यार फीलिंग्स पर हमने की हैं। आगे भी ये सिलसिला जो है ये आज जारी रखने की उम्मीद है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब प्यार भरी बातें एक बार शुरू हो जाती हैं, जब इश्क का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो मुझे फिर और कोई टॉपिक्स याद नहीं आते, है ना। यू नो कि इमोशंस के साथ मेरा एक बड़ा अच्छा कनेक्शन बैठता है, इमोशनल बातों के साथ मेरा एक बड़ा अच्छा कनेक्शन बैठता है। तो बहुत सारी बातें जो है वो आज, क्योंकि मैं शुरू कर चुकी हूँ ये टॉपिक्स, आज स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि अब कुछ और जिंदगी का फलसफा मुझे याद आने वाला है। तो बहुत सारी बातें जो है वो दिल पर, जज्बातों पर आज हम करेंगे और बहुत सारे आंसर्स जो है वो कभी कभी इन बातों से निकल करके आते हैं। हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कहीं हम सुन लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार यही तो हम जानना चाहते थे, है ना। तो आपकी फीलिंग्स से जुड़ी ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं या जिनके आंसर्स आज के एपिसोड में, आज के हमारे इट हैपेंस में आपको मिलेंगे, ये हम इस बारे में बात करेंगे, है ना। और बहुत सारी बातें हैं जज्बातों पर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसा सफर है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितना भी बोल लूं उतना कम लगता है, तो बातें होंगी। लेकिन फिलहाल इस अगले ट्रैक के साथ आइए सफर में आगे बढ़ते हैं। सुंदरी सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 AM आप सुन रहे हैं। It happens.

कभी कभी जब आप किसी के लिए कोई गिफ्ट लेने जाते हैं ना, तो ऑफकोर्स जब आप अपने दोस्तों के लिए कुछ परचेज करते हैं, उनका बर्थडे आ रहा होता है, उनके लिए कोई स्पेशल दिन होता है, आप कुछ परचेज करते हैं गिफ्ट देने के लिए, तो कई बार आप रेट्स चेक करते हैं ना, हाँ, कि आपके बजट में आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो हमारे दिल के बहुत करीब हो जाता है, उसके बाद जब हम उसके लिए कुछ गिफ्ट देने उसको जाते हैं मार्केट में, तो हम रेट्स पर ध्यान नहीं देते, हम उसकी पसंद पर ध्यान देते हैं। अगर उसने हमसे कुछ कहा होता है कि यार मुझे ना ये चीज़ बड़ी पसंद है, तो हम अपनी पॉकेट मनी या हमारी पॉकेट की जितनी हैसियत है, हम उसे एक्सीड करके, उसके बियॉन्ड जाके हम उसके लिए वो चीज़ जो है वो परचेज करने की कोशिश करते हैं, उसे गिफ्ट देने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे उसे खुशी मिलेगी। यानी जब किसी और की खुशी में आप अपनी खुशी ढूंढने या आप अपनी अपनी हैसियत से बियॉन्ड जाके अपनी पॉकेट का जो वेटेज है, हाँ वेटेज वर्ड सही है यार, उससे बियॉन्ड जाके जब आप किसी के लिए कुछ खरीदते हैं, कुछ परचेज करते हैं उसे गिफ्ट देने के लिए, उसकी खुशी के लिए, तो वही इश्क है। और वही ये बात बताता है कि एक्चुअली वो इंसान जो है वो आपके लिए कितना अहम, कितना खास बन चुका है। कभी कभी आप ये बात रियलाइज भी नहीं करते, मगर आपको उसकी खुशी का ख्याल होता है, और यहीं पर ये समझने की जरूरत होती है, यस वो इंसान जो है वो आपके लिए स्पेशल बन चुका है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रीचे प्रसवानी 1701। बहुत सारी अभी बातें हैं जो आपके साथ करूंगी, लेकिन इस अगले ट्रैक के बाद।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेसअप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 Event proudly supported by the city of Moreton Bay।
1: यार सब ठीक है बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ फोर्टिस मेडांटा सी के बिरला आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस टीम और